चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु

0: से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए, उसके बीजों का वपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपके दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हुई है और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आप सबका इस प्रभातकालीन सभा में स्वागत करती हूं। आज सन 2026 के मई महीने की 24 तारीख है तथा दिन है रविवार। आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो तथा एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालोम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं और हम आपको देते हैं आज की प्रभातकालीन सभा में अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं के समाचार।

8:40 पर आप सुनेंगे हेलो ईटानगर कार्यक्रम। 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हां, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे गालू श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: याकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगम जब एमदगला लुसिर पोलोग हम गो लोपी आरोगो घलोमेंकेन अबालोक मेलेन जिदांग नांगो मारियो मत मलोग तरु अलो हुनिबारोगो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दूरिक हिदा कुला कंट्री अंग येगो दुगो पिगोपागो ओगो डिफेंस अबालो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनर्जी सिक्योरिटी कनेक्टिविटी एजुकेशन ओक हिगो दोगो के योना ग्लोबल इश्यू गो काई कुन नदी हेक एक न अबा रू गदलो अलिव कदुन तपा हिरु लग जुका अमला इल तागे अगोंब गोमरेख लगलासिन इगे कुबा ओक प्रेम निसर में मलोग आलो ओगोई कुदा मुग अलग लोक 19 रोजगार अमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बे इदा कुला अदक अदक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोक हकोरी पान यूथ निजरिया में एमने 51,000 गेर रगो बे अपॉइंटमेंट पोता एमने जिलेन का ओ कम एम बे जिलेन दागला मेनला इजे मुग भारत गिदा हिगी कब कब देश गद्दम सिंह कुई कदन बे मोला लंगम तुक नाम के एमला यूथ निजरिया में गद्दम सिंह याका जागो मेन केन जितु अगर मुग देश होगो हकोरी पामा नाम जागो काकियम सिंह अगुमलो इंदला इला दाग बे एमला मोतुकुन मके एमला अलजा बे मेंदिरी सि जितु मलोग तरु आलो हुनिबारो गो चीफ मिनिस्टर नर्मे पेमा खांडो म वीडियो कॉन्फ्रेंस बे इदागला स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग गो दूतो ईटानगर लो एक्सिन तिराप डिस्ट्रिक्ट लो के डेवलपमेंट अबाब लो एक ने दिन शुरू ने कबालो मुनो हम बे पार्जो हितु तिराप डिस्ट्रिक्ट लो मेडिकल कॉलेज गो लगी दो धक एक लगा बा मोरू कुप लगी दो अमला पार्जो हितु ओगो कौन सा टाउनशिप लो के बदु बदा अब गद्दम ने तक तैयार दोग बे मोला कुस्का अमला सिमेंटु ओक तिराप डिस्ट्रिक्ट डीसी निगम तेचू आरान में चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस लोक कमेंटो मुनो मल्टीपर्पोज कॉन्वेंशन हॉल गो लगी ज्यादा दू नक एम जितु ओगो दियोमली ग सरजू हिबू अबू लोक फ्रंट लाइन एम सिन काजिन ताजिन जी बोलो अलदांग नक एम हेम पेम पाहितु ओक कौन सा ग टाउन आरालो एफसीआई गोदाम गोसिन माजी ब दरकार दांग नक एम सिन मेंजितु ओक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स को सिन माजब लगी जाता दो नाक अमला गुमिन होइन लोक पहले लोक का सिन माजब मगर जिन दो नाक अमला सिन मेंट पहितु ओक एक ने दिन शुरू ने स्टेट लेवल मीटिंग दो दाग लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता एनवायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्टर वांकी लुआंग एमएलए सोकत अबू वालम सोइन ओक वालिंग लोंगदांग ओक कब कब ऑफिसर रूगा दसिन ये लिख दू लिख तो तानगा दोनों गालों में के नागों हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक के तापदो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग में मलोग तेरे आलो होनीबार ओगो ईटानगर लो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज लोक के ऑफिशियल वेबसाइट को मुखोग जिका ओके में डिपार्टमेंट का नोटुन लोगों को सिन आगाम रूप ताकोग जिदा जिरा लसिन इटका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी गद्द तोमला मेंदाक यह कैंडिडेट मुनो यूपीएससी एग्जाम एम जिनाम लगा इलिजिबल दाग दे एक नागद एप्लीकेशन फॉर्म एम ने पीला प्रॉप्ट कुला का एमला मेंकेन जितु एक्सिन अदा गद पोस्ट लो डायरेक्ट बाय रिक्रूटमेंट इतादा नाक एमला सिन मेंजिता का ओके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल मलोग 23 तारीख लोक का यूरोप का ओगो कार्त तान लुई पोलोग 12 तारीख लोब एम दाग मलोग तरी आलो हुनिबर ओगो पेट्रोल ओके डीजल ग दाम 91 पैसा गो अमाजा बे बोराई काकू ओक होक पोलो ग इने कुन ग 15 तारीख ओगो 3 रुपीस गो बोराई तो एम बे बोराई इरो न्यूम को कुबक दा 19 तारीख ओगो 90 पैसा गो बोराई लकदा इजे काका नाम दोनी लोई आरा होगो तेल दाम माजी बे बोराई दकना के एमला मेंके नगो मलो जिलेन दक मियो वाइल्डलाइफ सेंचुरी डिवीजन रोइंग पेले लोक होक पोलोग इनेकुन का लुगो आलो हुकुरबार होगा पब्लिक सेफ्टी एडवाइजर गो जिलेन का अगर इजा मायोदिया पास एरिया गदलो ओक रोइंग टू अनिनी इन बदलो न्योत टाइगर नेला ये तो कुन्नक अमला मेंजितु ओक लगा बा डीए पो निगम निर्म मीटो रूमी में डिंच जाबा मेनला रोइंग लोके गुमी होइंग गदम ने नोनो ट्रेकिंग इन नाम पिकनिक डोमेन नाम ओक मायोदिया पास एमने कामेंट टाइम ताबे इन नाम गुना मेमने इजा अपाक बोलो अलदोना के एमला दिन सिजाब मेंगा जिन जिन जितु ओक टूरिस्ट गद्दम सिन दिन सिजाब मेंगा जिन जिन लसिन इका ट्रेकिंग अबा एम सिन इजा गम अपाक तोका एमला तवांग पुलिस ग इंक्लो एंटी ड्रग्स स्क्वाड एडीएस ओक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफटी गद्द जुग हिदला होके इनेकुन ग लुगवालो हुकुरबार ओगो जॉइंट एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन गो इगमेंका मुनुक

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोतम दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें हम बात करेंगे योग के बारे में, कैसे वो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को कम करता है, और साथ ही सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन खूबसूरत गीत। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहतरीन गीत के साथ, जो लिया गया है फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज में।

श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे पूनम। तो आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं हमारे फ्रेश और पॉजिटिव मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में, जहां हर सुबह होती है एक नई शुरुआत के नाम। तो दोस्तों, सुबह उठते ही कभी ऐसा होता है कि बॉडी तो बेड से उठ जाती है, लेकिन दिमाग ऑलरेडी दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे कि आज काम का प्रेशर है, कल वाली बात गलत तो नहीं थी, या फ्यूचर में क्या होगा, और धीरे धीरे ये सिंपल थॉट्स बन जाते हैं ओवर थिंकिंग। WHO के मुताबिक एंजाइटी सिर्फ नर्वसनेस नहीं होती, ये एक्सेसिव वरी और फियर हो सकता है जो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि हमारी मॉर्निंग को पीसफुल और पॉजिटिव बनाने में योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी हेल्पफुल होती हैं। रिसर्च और रिव्यूज भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस करें तो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो काफी कम होने लगते हैं और धीरे धीरे रिलैक्सेशन आपको फील होने लगती है। तो दोस्तों, चलिए सुबह सवेरे के टाइम अब हम एक छोटा सा मॉर्निंग काम ब्रेक लेते हैं। तो अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक डीप ब्रेथ लीजिए, सांस अंदर और साथ ही साथ में फ्रेश एनर्जी अंदर, और जैसे जैसे सांस बाहर, वैसे वैसे स्ट्रेस

और जो ओवर थिंकिंग है उसको भी बाहर निकालिए और इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 to 2 मिनट और अप टू 5 मिनट। अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अप टू 5 मिनट्स भी सिर्फ आपको सांस अंदर लेना है और हर सांस अंदर के साथ एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स लेनी है और सांस बाहर निकालते हुए आपको ऐसा फील करना है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, वो सब आपके बाहर निकल रही है। ये प्रैक्टिस आप जब शुरू करेंगे तो मे बी आपको 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ा मुश्किल लगे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यानी कि अप टू 4-5 मिनट्स होगा तो आखिर में आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो दोस्तों, कभी कभी हम फ्यूचर की इतनी टेंशन में खो जाते हैं कि प्रेजेंट की ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स को भी मिस कर देते हैं। याद रखिए, हर थॉट सच नहीं होता और हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहूंगी। 5 से 10 मिनट खुद के लिए निकालिए जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड देन उसके बाद डीप ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और साथ ही साथ ये जो बारिश का मौसम है सुहाना, इसे भी आप इंजॉय कीजिए। इस मौसम में जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको सच में ऐसा फील होगा कि आप कम्प्लीटली अंदर से रिफ्रेश हो गए हैं, लाइवली हो गए हैं और जितनी भी स्ट्रेस है वो आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, योगा करने के लिए आप एक योगा थेरेपिस्ट को भी चुन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर को भी चुन सकते हैं। अगर किसी योगा थेरेपिस्ट या इंस्ट्रक्टर की देखरेख में अगर आप योग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, वो आपकी और भी बहुत सारी समस्याएं सुन सकता है और सुलझा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में या फिर हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें योगा थेरेपिस्ट और इंस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो केवी के अंदर आपको योगा थेरेपिस्ट मिल सकते हैं या इंस्ट्रक्टर मिल सकते हैं, जैसे आरके मिशन हॉस्पिटल है और भी बहुत जगह ये अवेलेबल रहते हैं, तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी योगा सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज सुनिश्चित करनी होगी कि क्या वो आप जो चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, और साथ ही साथ उनकी ऑथेंटिसिटी को भी एक बार जरूर जांचिएगा। नहीं तो आप खुद से अगर सिर्फ लंबा गहरा सांस अंदर और पूरा सांस बाहर सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आइदर मॉर्निंग और इन द इवनिंग अगर आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी काफी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म 3 इडियट्स से, जिसे गाया है सोनू निगम, सवानंद किरकिरे और शान ने, और गीत के बोल तो आप गेस कर ही सकते हैं, ऑल टाइम फेवरेट ऑल इज वेल। क्योंकि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये गाना कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस से दूर ले ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी RJ पूनम के साथ।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल पहाड़ों को छू रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है और नेचर जैसे खुद मेडिटेशन कर रहा हो। कभी आपने नोटिस किया है रेन की आवाज कितनी सूदिंग होती है, जैसे ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे वॉश कर रही है। आज की इस रेनी मॉर्निंग पर एक बात याद रखिए दोस्तों, हर बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, कभी कभी वो माइंड को भी फ्रेश करने के लिए बेस्ट होती है। अगर एंजाइटी या ओवरथिंकिंग चल रही है तो बस 2 मिनट के लिए विंडो के पास बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए या फिर एक डीप ब्रेथ लीजिए और बारिश की आवाज सुनिए। योगा और

और माइंडफुल ब्रीदिंग हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प कर सकता है। और हिल्स की जो जो हमारे पहाड़ों की जो शांत मॉर्निंग्स हैं, और वो उस कामनेस को और भी ब्यूटीफुल बना देता है और भी ज़्यादा डीप बना देता है। तो दोस्तों, चाय का एक कप हो, बारिश का मौसम और एक शांत दिमाग, इससे बेटर मॉर्निंग कॉम्बो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इतनी प्यारी सी जो जिंदगी है, जो हमें एक ही बार मिलती है, हमें इसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस के बर्डन में नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक बेहतरीन गीत जिसका नाम है लव यू जिंदगी सुनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: श्रोताओं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी ईटानगर का। अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे आपातकालीन श्रोताओं के समाचारों का।
1: श्रोताओं का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आपातकालीन श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी ईटानगर जीरो होकला सरो का पतानी प्रोग्राम आता में मलिम बलिए सरो ननों का पेजपा पुलो को निमित पतो दो सरो का पुलो को लेंसी पूरा यमो U.S. Secretary is it Marco Rubio la Prime Minister Narendra Modi ni kapasala Saturday aloho moanye ganda ponyeka mokoloko hoka hembosala munimi lokosala somolo Wedred sector defense strategic technologies trade and investment energy security connectivity education ho people to people ties sakata mi lokosala वैसे से हो न जिला दो ग्लोबल ला अब जे रीजनल हो न जिला दो नकाता का पुगो हो हेंकला प्राइम मिनिस्टर लुला इंडिया हु या नो लुलो सुदो कुपाका लुसुने में हेम्बो मोली आयापा लुजान सला पासुला ममापा आगोलो का लुजान लो दासने में हेम्बोली के हला लुने ला लुको दो सैटरडे लो हो वीडियो कॉन्फ्रेंस पा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Jaralengo hela akomi ponsa ponsa government department la organization ho rolya hela rong kwa nupaka rozgar mela mi kam ko ho sanja ni muya pa atami niti pa appointment letter mi binya bune Mr. Modi lokola awu je country ata ho india hu kam go don mi mbi mbasla mudu sanja hi me ata ka kam ji ko pa molumi opportunities mi pai kendu pa अगोहो एला कामजिला मन्या केंदु पाहला हडापा मोलुबाला इंडिया का सांचा हिमेया तांग हु गांडामिका डेवलप दोपा मचासा कोहो अनो खनपा जिला अतोका मगोलोगो मे मन्या दो हलालुला रोजगार मेला से गवर्नमेंट का सांचा हिमेया तांग पाका मगोलोगो दोनेमी नेमे नाम बिला किंदोने हमे मबिताली केलाका लुनेमी मपे बेनेमी कपादो हला रोजगार मेला में कंट्री डका लेम्बा अबे अयंपले ला कन्वे लोकेशन हो मगला मुने हला लुको दो तिराप डिस्ट्रिक्ट का सेट लेवल दोको मुसुने सैटरडे आलो हो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ईटानगर हो कला वीडियो कॉन्फ्रेंस पा मगने हला लुको ला सका दुको में कम को हो लुसुला तिराप डिस्ट्रिक्ट हो मेडिकल कॉलेज में खुलीला मुदोकोरा आया केंदो खोंसा टाउन होका लेम्बो आया मपाका जिनमी मल्यांदो पा लाजू लेम्बो का करांदा दो ब्लॉक लका जिनमी करांदा दो मतिला ममा दो पा आया कलिंपा इचे मदा दो कोदा हला मना लुसुला मत सकादुकु में कम को हो तिराप का डिफिटी कमिश्नर टेचु आरान सो का मगोलोगो दोने में लुकोला मल्टीपर्पस कन्वेंशन हॉल दियोमाली चाजू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट FCI urgent construction, multi-level parking complex in Konsa, Honno Hona network Achimanu Himitara, Mulibidopa, Wangcha Rajkumar College Mika, Mulyamada, Muchasana, Saka Tampa, Bugomin Lune Halalukodo, Sakadukumi Kamukoho, Deputy Chief Minister Chunaman, Chief Secretary Manish Kumar Gupta, Environment and Forest Minister Wangki Luang, MLS Zakatabo, Wanglang Swan, Ho, Wanglen, Longdong, Ho officers Atamala, Abu Monyane, Halalukodo. Rural Development and Panchayati Raj Minister Ojing Dasing Saturday Aloho, Panchayati Raj Development Ka Official Website Me Launch Mubila, Ho Department Ka Niti Logo Malami, So Ka Mugubo, Gramin J. Sakaya, Gramin J. Hitayala, Lukoko Budola, Mukobitu. मोलुला सोशल मीडिया पोस्ट हो सकमरी ने से डिजिटल फील होका से अनोखनुआ को मपे हला लेम्बा हो कमगोमी आयापा मबिला अलरपा मबिताली केलाका लुने में मपे बिला म्यू आता मलांजा में हाता चाइंगला म्यू आतंतर मोबो मोन्याला Miwa tampa mo mo lupa hembodola mogologo mi mubila do halalukola si Akashwani Itanagar jiro hokala tapala do UFSC government of India ka abuje

अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जिसमें हम आपको सुनाते हैं लोकल डेलीज के हेडलाइंस और साथ ही सुनेंगे कुछ बेहतरीन गीत। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, जो लिया गया है फिल्म जीनियस से, जिसे गाया है आतिफ असलम ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का। तो चलिए, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं आज की पहली खबर। मुख्यमंत्री का कहना है कि आईएलपी का मुद्दा वास्तविक है, हितधारकों से बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को स्वीकार किया कि अरुणाचल अनुसूचित जनजाति बचाव आंदोलन समिति द्वारा उठाया गया इनर लाइन परमिट का मुद्दा वास्तविक है और कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में एएसटी बीएसी सदस्यों, समुदाय आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करेगी। खबरों के मुताबिक एएसटीबीएसी ने इस मुद्दे पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करने के अलावा सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो अगली खबर, आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए। अरुणाचल प्रदेश में रविवार से गरज और बिजली के साथ व्यापक भारी बारिश होने की संभावना है और भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने लोगों को अगले 5 दिन तक भारी बारिश के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। यहां के मौसम विभाग विज्ञान केंद्र द्वारा शनिवार को जारी किए गए जिलावार चेतावनी मानचित्र के अनुसार मौसम प्रणाली के 24 मई को विशेष रूप से मध्य और पूर्वी जिलों में और अधिक तीव्र होने की आशंका है। ऊपरी सियांग, सियांग और पश्चिमी सियांग के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को दर्शाता है। निचले दिबांग घाटी, पूर्वी सियांग, शी योमी और ऊपरी सुबनसिरी सहित आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट यानी कि सावधान रहें जारी किया गया है, जो कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति को दर्शाता है। आईएलपी जांच अभियान जारी, सियांग घाटी से सैकड़ों लोगों को निष्कासित किया गया है। पूर्वी सियांग जिले की पुलिस ने इनर लाइन परमिट उल्लंघन के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद पिछले 20 दिनों में लगभग 161 आईएलपी उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने अभियान के दौरान पासीघाट इलाके से 62 लोगों को पकड़ा, जबकि सिले ओयान पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा बंद नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 80 लोगों को हिरासत में लिया। कानूनी औपचारिकताओं के बाद सभी उल्लंघनकर्ताओं को पड़ोसी राज्य असम भेज दिया गया है। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में तिराप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मुद्दा उठाया गया। शनिवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक टीसीएल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तिरप जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मुद्दा था।

श्रोता दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का। अभी आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं के समाचार। आप सभी बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं के समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है सदाबहार, जिसमें हम आप बात करेंगे वेदर अपडेट्स की कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को मालूम है, बारिश का मौसम है, इसीलिए आपको एक बारिश का गाना ही सुनाते हैं जो लिया गया है फिल्म गुरु से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। तो गीत के बोल हैं बरसो रे। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार का। तो अब जानकारी लेते हैं आज के मौसम की। आज सूर्योदय हुआ 4:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:01 पर। यानी कि आज पूरे दिन लगभग अगर सूर्य की रोशनी देखें तो 13 घंटे और 38 मिनट तक रहेगी। दोस्तों, आज का जो उच्च तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और निम्न तापमान रात को 21 डिग्री तक गिरेगा। आज का जो तापमान है अभी के समय में 24 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन आपको महसूस हो सकता है 28 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप पहाड़ पे रहते हैं या फिर आप नीचे प्लेन्स में रहते हैं तो वहां पर भी 3-4 डिग्री का बदलाव आ जाता है। आज आसमान में लगभग समय में बादल रहेंगे और बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो सकती है और भारी बरसात भी हो सकती है, लेकिन रात को भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। आज हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और आज के दिन लगभग हवा साफ की श्रेणी में आ रही है, यानी फ्रेश एयर की श्रेणी में आज हवा की इंडेक्सिंग है। तो चलिए, ये थी वेदर अपडेट्स। और अब आप को सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, वो भी है बारिश पे। तो अब अगला ये बारिश वाला गीत आप गेस कीजिए कौन सा होगा। ये लिया गया है फिल्म बागी से, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने और मीट ब्रोस ने। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत जिसे आपने गेस कर लिया होगा, छम छम का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने

0: कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल रूबियो की भारत यात्रा पर

0: दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हमें हमेशा हमारी सोच को बड़ा रखना चाहिए। तो चलिए, इस कहानी से पहले आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं, याद पिया की आने लगी, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसका शीर्षक है बड़ा सोचो। एक अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी तो वह टिफिन से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब सा था। वह रोटी को एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे

डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी को एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ कर टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर यह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास सब्जी तो है नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी है। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूं। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद यानी टेस्ट आ रहा है? तो उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते तो तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही है तो भला छोटा क्यों सोचें, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। तो दोस्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप छोटी सोच रखोगे तो आपको छोटा ही मिलेगा और बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा, यानी कि हम सोचते जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसीलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में, इसीलिए जब भी सोचना ही है तो हमेशा बड़ा सोचो। तो इस कहानी में हमें एक चीज ये भी आपको लगेगी कि क्या सच में सोचने से उसको अचार का स्वाद आ रहा था, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप अभी कोई चाय के बारे में सोचे तो उसको चाय पीने का मन करने लगेगा या उसका जो टेस्ट है वो याद आने लगेगा। अगर कोई पानी पूरी के बारे में यानी गोलगप्पे के बारे में सोचता है तो उसको वो खाने का मन या फिर आपको उसका जो टेस्ट है वो रिमाइंड होने लग जाता है, यानी आप उसको सोच के आपके मुंह में स्लाइवेशन यानी मुंह में पानी आने लग जाता है। दैट मीन्स सोच से कहीं ना कहीं हम पर असर पड़ता है। तो ये बात तो हुई खाने से रिलेटेड, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे तो सच में आप उसके बारे में और उस चीज को अचीव करने के बारे में और पास जा पाएंगे, यानी कि आपको वो चीज अचीवेबल लगेगी, आपको वो चीज आप पा सकेंगे। जैसे इसको एक चीज और से समझते हैं, जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है, एक तो ऐसे हैं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ब्लैंक हैं और कोई वेबसाइट पे भरोसा करके उसके थ्रू जा रहे हैं, और एक अगर आपने उस जगह के बारे में कुछ कुछ चीजें जानी हैं, समझी हैं, तो आप हमेशा उस जगह पे ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं और आपके वहां जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो वो काम पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमेशा सोचो और बड़ा सोचो। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म क्रिश से, जिसके बोल हैं कोई तुमसा नहीं। श्रोताओं दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपकी अपनी चहेती आरजे पूनम के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेलो ईटानगर कार्यक्रम। आज हमने जाना कि कैसे बड़ी सोच से हम कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125

0: घटना स्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशन तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरविंदर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। समाचार समाप्त हुए।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. Ezra Shankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
2: The Quad Foreign Ministers Meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The MOU in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The government has published draft rules under the VBG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. In Maharashtra, a 1500-page charge sheet has been filed by the State Special Investigation Team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. IMD has forecast severe heat wave conditions today in Bas-

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। ये है वो जगह है जहां आपको मिलेगी बॉलीवुड टाउन की फुल अपडेट, ओटीटी के नए धमाके, बॉक्स ऑफिस की ताजी हवा और मूवी रिव्यूज। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म सैयारा से, जिसे गाया है फहीम अब्दुल्ला ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो चलिए आपको ले चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और आपको सुनाते हैं वहां की कुछ खबरें। 45 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनेगी मां, सामने आई गोद भराई की फोटोज। मशहूर एक्ट्रेस और ब्लॉगर संभावना सेठ के घर जल्द ही एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजने वाली है। पिछले कई सालों से मां बनने का जो सपना संभावना और उसके पति अविनाश द्विवेदी देख रहे थे, वह अब आखिरकार पूरा होने जा रहा है। हाल ही में इस कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी गोद भराई यानी कि बेबी शॉवर सेरेमनी की बहुत खूबसूरत और अनदेखी तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में संभावना के चेहरे पर मां बनने की खुशी और एक लंबा संघर्ष पूरा होने का सुकून साफ देखा जा सकता है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में अपने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींच लिया। व्हाइट पेंट सूट से लेकर पिंक केप गाउन तक ऐश्वर्या का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेटी आराध्या बच्चन भी उनके साथ स्टाइलिश लुक में नजर आई। ऐश्वर्या राय बच्चन गॉर्जियस डीवा है, उनका हर लुक ये साबित करता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भले ही कॉन्स 2026 के आखिरी

दिनों में एंट्री ली, लेकिन सबको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके नए लुक ने तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस ने इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के खत्म होने के साथ सारी लाइमलाइट ही लूट ली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक काफी ग्लैमरस हैं। इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में रहती है। नताशा एक बेटे अगस्त्य की मां भी है, मगर उन्होंने खुद को काफी मेंटेन करके रखा है, जिससे कई लोग चकमा खा जाते हैं कि वो एक बच्चे की मां है या नहीं। नताशा खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करती हैं। उन्हें कई बार जिम से बाहर आते जाते देखा गया है। हाल ही में उनके एक वीडियो की बड़ी चर्चा है, जिसमें एक्ट्रेस ग्राउंड में एक्सरसाइज करती दिख रही है। उनके आसपास काफी सारे बच्चे हैं, वो इस दौरान काफी मेहनत कर रही है। वो ट्रैक पर ऐसे रनिंग जॉगिंग कर रही है जैसे कोई एथलीट करता है। नताशा स्टेनकोविक के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने तो उन पर तंज कसते हुए लिखा है कि हार्दिक पांड्या के तलाक के बाद उन्होंने ओलंपिक में जाने का सोचा है। एक्ट्रेस के लिए वो ये भी लिख रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। हालांकि कुछ लोगों ने नताशा का बचाव भी किया है। उन्हें इस तरह ट्रोल करने वालों के एक्ट्रेस के फैंस बुरी तरह झगड़ रहे हैं। तो चलिए अगली खबर। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 जब से ऐलान हुई है, तब से लगातार चर्चा में है, लेकिन हर बार वजहें कुछ ठीक नहीं रही। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस के बीच के सारे मनमुटाव अब खत्म हो चुके हैं और फैंस ने राहत की सांस ली थी, मगर अब ऐसा लग रहा है फिल्म के सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो बाबू राव का किरदार निभाने वाले सीनियर एक्टर परेश रावल एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल ने कथित तौर पर इस फिल्म के लिए मिला अपना साइनिंग अमाउंट मेकर्स को वापस कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह रकम 15% ब्याज और कुछ अतिरिक्त मुआवजे के साथ लौटाई है। एक सूत्र ने पोर्टल को बताया कि फिल्म के लिए पेश रावल की कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन टर्म शीट के में एक अजीब शर्त थी जिसके मुताबिक उन्हें बाकी की बड़ी फिल्मों के सिनेमाघरों में रिलीज होने के एक महीने बाद ही मिलनी थी। अगली खबर है, बॉलीवुड फिल्म मेकर डेविड धवन के पिछले 40 सालों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और आखिर कूली नंबर 1, राजा बाबू, जुड़वा, बड़े मियां छोटे मियां जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर को आज हर कोई जानता है, लेकिन गोविंदा ने बनाई डेविड धवन की पार्टी से दूरी। स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त हुई। मदद के लिए आगे आए मीका सिंह और दान देंगे अपनी 10 एकड़ जमीन। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा 12 जून 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन यह फिल्म सोलो रिलीज नहीं होगी। कंगना रनावत की फिल्म भी इसी दिन रिलीज होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम,
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर का, सॉरी फिल्मी गपशप का। तो दोस्तों, आपको बताते हैं अब इस कार्यक्रम में कि अभी कौन से फिल्म्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले एक फिल्म का नाम है टर्नर, जो कि 29 मई को आने वाली है। उसके बाद है नवा गुंजारा, और ये भी 29 को आएगी। ड्रॉप आउट, ऑब्सेस, रजनी की बारात, हीरा सारा और पौंडीचेरी, जीना दिल से, ये सभी 29 मई को रिलीज होने वाली है। कुछ अल्फाज बाय नितिन आर मिरानी, ये 30 तारीख को रिलीज होगी। उसके बाद 4 जून को रिलीज होगी पेरी, जिसमें ये पता चलता है कि मूवी फुल ऑन एक्शन और एटीट्यूड से भरी होगी। डार्क लुक, वाइब्स, इंटेंस, और लगता है थिएटर में जैसे विसल्स गारंटी है। अगली है फिल्म है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। बचपन का सुपर हीरोज अब बड़े स्क्रीन पर और भी ज्यादा पावरफुल अवतार में है। स्वॉर्ड्स, फाइट्स, मैजिक यूनिवर्स और लार्जर देन एक्शन साईफाई फैंस के लिए ये बहुत अच्छी फिल्म होगी। अगली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। इसका तो नाम ही काफी है, प्यार, मस्ती और फिल्मी केमिस्ट्री का फुल कॉम्बो लग रहा है। तो मुझे लगता है ये जो फिल्म है, ये 2026 का नेक्स्ट रोमांटिक एंथम मूवी बन सकती है। अगली फिल्म है बंदर, नियोन लाइट, मिस्ट्री गैंग और डेंजरस वाइब। पोस्टर कह रहा है ट्रस्ट नो वन। इस फिल्म के पोस्टर में कहीं ना कहीं ये वाइब दे रही है। अगली फिल्म है हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट। भाई साहब, पोस्टर देख के ही लाइट्स ऑन करने का मन कर रहा है। अगर जंप स्केयर्स पसंद है तो पॉपकॉर्न के साथ हिम्मत भी ले आओ। और अगली मूवी है स्केरी मूवी, हॉरर का मजाक और कॉमेडी का ओवरडोज। थिएटर में हंसी के साथ चीखने भी वाले हो, क्योंकि ये मूवी हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर है। अगली फिल्म है नवा गुंजारा, इसमें क्रीपी मास्क, डार्क मिस्ट्री और सस्पेंस है जो दिमाग हिला देगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ आगे आने वाली फिल्में जो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो हॉन्टेड 3D है, ये 12 जून को आएगी। स्केरी मूवी 5 को आएगी। बंदर है जवानी तो इश्क और ही मैन, ये सब 5 जून को रिलीज होगी। तो आप अपना टाइम लेकर सोच सकते हैं कि अब आप अगले फिल्म कौन सी देखने जाएंगे। आपको रोमांटिक मूवी पसंद है या फिर हॉरर या साईफाई मूवीज, तो आप अपने आप का रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी मजेदार फिल्में आने वाली है और आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उन फिल्मों को। तो चलिए, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत, जो लिया गया है फिल्म गदर 2 से, जिसके बोल हैं ऊर्जा काले कामा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का, जिसमें हमने बॉलीवुड टाउन की कुछ अपडेट्स के बारे में जाना, क्या घूम रहा है और कैसे क्या क्या चल रहा है बॉलीवुड की गलियों में, और जाना कि आने वाली कौन से फिल्म्स हैं अगले वीक। तो चलिए, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो लिया गया है फिल्म हंसी तो फंसी से।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो चलिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाते हैं फिल्म जोश से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: श्रोताओं दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और आप सबका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां हम करते हैं आपकी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट को पूरा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें भेजा है, जो सुनना चाहते हैं दिल का रिश्ता फिल्म का टाइटल सॉन्ग। और जो हमारे लिसनर्स हैं वो दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार दागसे, ये ग्राम जसवंडी डिस्ट्रिक्ट खांडवा मध्य प्रदेश से हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने हमें रिक्वेस्ट की इस बेहतरीन गीत की। तो चलिए आपके इस बेहतरीन रिक्वेस्ट को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों

0: से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज। ये लिखते हैं कि इनका नाम हर्षित गोस्वामी है, ये बोखा असम से हैं। ये सुनना चाहते हैं बेहतरीन गीत तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित गोस्वामी जी, आपने हमें मैसेज किया और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अभी आप आनंद लेंगे आपके इस बेहतरीन रिक्वेस्ट का, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला मैसेज जो सुनना चाहते हैं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो, फिल्म रंग से ये जो गीत है रिक्वेस्ट करने वाले हैं रोमेश पत्रो, रूनू पत्रो एंड लकी, जो कि गोलघाट आसाम से हैं। और ये इस बेहतरीन गीत को डेडिकेट करना चाहते हैं अमोल बिमोल, बायकॉन जोगिंद्र और लकी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मिलके हमें ये गाने को रिक्वेस्ट किया है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमें बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट करते रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। और अब आप अपनी रिक्वेस्ट को सुनिए।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज, जो कि ये सुनना चाहते हैं फिल्म मिलन का ये बेहतरीन गीत, जिसके बोल हैं सावन का महीना पवन करे शोर। इस बेहतरीन गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और ये बेहतरीन जो गीत है इसे हमें रिक्वेस्ट भेजा है जोगेंद्र रोंगपी, दोरा मिकरी रोंगपी और सोनाली इंतिपी ने, जो कि सरिहाजन कार्बी आंगलोग आसाम से हैं। और ये जो गीत है ये डेडिकेट करना चाहते हैं अमल बासुमत्री, बायकुन मुंडा, रमेश पात्रो, रूनू पात्रो, जो कि और जितने भी अरुणाचल प्रदेश के श्रोता हैं उन सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने हमें ये बेहतरीन गीत रिक्वेस्ट किया। और आपस में जो आप तालमेल बढ़ा रहे हैं, असम और अरुणाचल एक दूसरे के लिए गाने डेडिकेट कर रहे हैं, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सारे अरुणाचल वासियों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना खूबसूरत गीत हमें डेडिकेट किया। तो चलिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

श्रोताओं दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज जो कि निशा रानी आसाम से हैं, उन्होंने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं वास्ते सॉन्ग को, ये अपने जोहन के लिए ये बेहतरीन गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: 200.000 lira.
1: What now? You get what?
2: What happened?
0: बचा मेरा ब्रो, पर अब शायद इस... I'm sorry.
3: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें भेजा है आरोहन सेखिया ने, जो कि काजीरंगा आसाम से हैं। ये सुनना चाहते हैं फासले सॉन्ग को, जो कि कविश के द्वारा गाया गया है। ये लिख रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन गीत है, लेकिन अंडररेटेड है, सब लोग इंजॉय कीजिए। एंड ये अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं और साथ में खुद को खुद से शाबाशी भी दे रहे हैं कि वेल डन आरोहन, प्राउड ऑफ यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। ऐसा ये अपने बारे में खुद से कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें खुद से कैसे प्यार करना चाहिए, और हम कभी कभी खुद को भी कोई बेहतरीन गीत डेडिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को, और आपको आरोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमें खुद से प्यार करना फिर से याद दिलाने के लिए। तो चलिए इस बेहतरीन गीत को सुनते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जिसपे हम आपकी रिक्वेस्ट को करते हैं पूरा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है, हमें भेजी है ज्योति सुरीन ने। ये सुनना चाहते हैं टॉयलेट, एक प्रेम कथा का बेहतरीन सॉन्ग, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सुरेन जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमें इतना बेहतरीन गीत रिक्वेस्ट किया। तो दोस्तों, चलिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोताओ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गीत। हमें भेजा है हितेंद्र दास ने, जो कि सोनबिल कोंडाली असम से हैं। ये इस बेहतरीन गीत को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सभी स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी ईटानगर परिवार को और अपने दोस्तों को, जिनका नाम है मीनल, अंकित, नारायण, अमल, बिमल और बहुत सारे जो श्रोतागण हैं उन सबको। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद है हमने आप सभी श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आपके चहेते आरजे नीलम। आज की पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो अब मुझे यानी अपनी आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अपनी रेडियो साथी आरजे नीलम के साथ।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिठके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमेरिका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है।

आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप सभी सुनने वालों का पुनः स्वागत और अभिनंदन है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इस दूसरी प्रसारण सभा के साथ आपके साथ जुड़ चुकी हैं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। और हाँ दोस्तों, अब तक के सफर में आपके साथ बनी हुई थी आपकी अपनी आरजे पूनम। आरजे पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए और स्टूडियो की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:11 हो रहे हैं। तो चलिए श्रोता मित्रों, इस प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर से।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। जी हां श्रोता मित्र, इस कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे गोलियों की राज लीला रामलीला फिल्म से, जिसे आवाज दी है आदित्य नारायण ने। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही चले इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत। गंगूबाई काठियावाड़ी से नीचे प्रस्तुत है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। कार्यक्रम फिल्मी लहर में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिनेमा जगत के बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में एक संजय लीला भंसाली की फिल्म के गाने। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सभी को पता है शानदार सेट, शाही किरदार, गानों में गहराई और दमदार कहानी संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत है। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस बेहतरीन गीत को अरिजीत सिंह और अन्य साथियों की आवाजों में। समय की कमी के कारण इस गीत को हम आपको पूरा सुनवा नहीं पाएंगे। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही बता दें कि संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्मों के बेहतरीन गाने आज हमने आपको सुनवाए कार्यक्रम फिल्मी लहर के तहत। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ क्षणों में आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, आपको बता दें कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

और आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में यानी कि 12 बजते ही आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई

जी में समाचारों को। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:12 हो रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम के शुरुआत में उचाय फिल्म का ये गीत।
2: कुछ कुम झुम कुछ कुम झुम

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसके साथ ही श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है हमारे फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीत माला।

Energia!

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे। हिंदुस्तान की कसम फिल्म से सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और अन्य की आवाजों में। जी हां श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीत माला। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: सरहद से जब तू वापस आए तो उम्र भर कहीं न जाए, हम दोनों के दिल की बात जो रह गई थी अधूरी, उन बातों को हम एक दूजे को बताए। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे सोल्जर फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि कार्यक्रम में फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं जाएगा मत।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम, ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहां होते हैं दिल से दिल की बात। और आप आनंद ले रहे हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों का कार्यक्रम गीत माला का। जी हां श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण फिल्म के ये गीत ज्योतिका और कीर्ति सगाथिया की आवाजों में। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाने जा रहे हैं सैनिक फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम गीत माला का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे सैनिक फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की युगल मधुर आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में यानी कि एक बजते ही आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। श्रोता मित्र, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 1:10 हो रहे हैं।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता मित्र, अब हम आपको ले चलते हैं एक हसीन सफर, यानी कि 60-70 और 80 के दशक के बेहतरीन संगीत के सफर पर, जो संगीत की दुनिया का एक बेहतरीन और खूबसूरत दौर था, जिसकी गीतों के बोल और संगीत लोगों की जबान पर आज भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जैसे पहले हुआ करता था। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं, जी हाँ, डॉन फिल्म के गाने। जो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 1978 में। तो चलिए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत गीत का।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। जी हाँ, इस खूबसूरत गीत का आप सुन रहे थे सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, एक बार फिर से बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए इसी के साथ ही इस सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं नाम फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता मित्र, आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में, जिसके तहत हम आपको सुनवा रहे हैं 60, 70 और 80 के दशक के बेहतरीन नगमे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत किस्मत फिल्म से आशा भोसले और शमशेद बेगम की आवाजों में।

0: इंतकाम फिल्म का ये बेहतरीन गीत लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दमदार संगीत, राजेंद्र कृष्ण के खूबसूरत बोल और हेलेन का बेहतरीन डांस। जी हाँ दोस्तों, इस यादगार गीत का आप आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही 60, 70 और 80 के दशक से भरपूर इस संगीतमय सफर का जी हाँ समापन यहीं पर होता है। लेकिन आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहे, तो आप जुड़े रहे अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुँची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में,
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे क्रिस थ्रिफम से ये गीत जुबिन गार्ग और अलिसा चेने की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ओमकारा फिल्म का ये गीत।

फिल्म से आप सुन रहे थे नमक इश्क का ये बेहतरीन गीत रेखा भारद्वाज और राकेश पंडित की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हिंदी फिल्में की तो पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। और आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में यानी कि 2 बजते ही आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज, और 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। आपको बता दें कि आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे 2:30 पर, जी हाँ, 90 के दशक के सुपरहिट गीतों के साथ। फिलहाल आप कुछ प्रतीक्षा करें।

0: ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

0: चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने सुना दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। श्रोता मित्र, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार दोपहर के 2:30 हो रहे हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

चीज का है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 के दशक का संगीत वाकई सुपरहिट था। उस दौर के गानों में आज भी एक अलग ही जादू और सुकून है। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे 90 के दशक के सुपरहिट फिल्म के बेहतरीन नगमे। जी हाँ दोस्तों, जिसके संगीत नदीम श्रवण की मशहूर जोड़ी ने तैयार किया था और गीतकार समीर के लिखे बोल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तान की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बेहतरीन गाने। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के तहत श्रोता मित्र आज आप आनंद ले रहे हैं सुपर हिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी फिल्म के सुपर हिट गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। श्रोता मित्र आपको बता दें कि 1996 में रिलीज हुई ये फिल्म एक बेहद ही लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था और मुख्य भूमिका में आमिर खान करिश्मा कपूर थे। ये फिल्म अपनी जबरदस्त प्रेम कहानी सुपरहिट गानों और बॉक्स ऑफिस सफलता के लिए जानी जाती है। श्रोता मित्र चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं इससे फिल्म का अगला गीत।

परदेसी जाना नहीं। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि ये गाना, जी हाँ दोस्तों, अपने समय का सुपरहिट गाना रहा है, जो कि आज भी लोगों के जबान पर बसा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ही श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम का अब हम आपको आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ही।

Distributor Ship 1 hashtag set operate command dakhai thaka ra ka district chu yut supply on hashtag set saman dakhai thaka public san wi nai oil marketing company ocean dom dom ja wan tan na thau thaka ra ka chief minister pema khando 1 wi cabinet collection fai face sum district wise review meeting of hai kada dadla chief minister ka wi social media halam ka thau ka an wan infrastructure requirement ra ka manpower need dom dom san ra ka development san hi tingin hi tuk hi kanai dakhai thaka Raga Chief Minister ka thau ka Commissioner Planning One Infrastructure Committee gunglak shan so han gunglak kam nang sam san thok ma dakhai tha ka Raga High Level Committee One Chief Secretary One gunglak Review Exercise One gunglak shan so tur mun lat san thok ma dakhai tha ka Raga Rural Development and Panchayati Raj Minister Ojing Tashing ka official website launch kan kada da da Department of Panchayati fa वनक डिपार्टमेंट फॉर लोगों ने खान का दादादला ग्रामीण जय सुखाये ग्रामीण जय हिताये दादादला इतना गलत अन वंग्रासु डेमोक्रेसी वाला का गवर्नेंस चंद्रिंग का संभव वन फिर का था उम्म दादादला वाला का मेहाउ वेल्लाइफ सेंचुरी डिवीजन रोइंग का पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी इश्यू कन का दादादला टाइगर टाइमन गान मयो डायलॉग वन फिर रोइंग नंग अनिनी केब लग लोअर दिवांग विली डिस्ट्रिक्ट लग वाला का डिवीजनल Forest Officer Mito Rumi ka Military Communication Post Mayodhya hai an nga na dakhai tha ka. Ra ka shau mo citizen, tourist, commuters, ra ka msan mi trekking, picnic, msan award ka hit gayo ka da dat la. Ra ka petrol, petrol nang diesel fa kung wan, musha kung ru man nang na simok mo bula dakhai tha msa tal de rat. Chumburat, plak len bula dakhai tha mga ke bangung lag. External oil, kungwan bolum thi wan felak ra ka petrol price wan kungu man nan price bola da khaya tha umra ka diesel kungwan no na chimok mo price bola da ra ka anwan global market ra ka vika rupees sum san fele saman da khaya tha umra kan som lak marketing like on so paim to kman da gyat de

श्रोता मित्रों, अभी आपने सुना ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। जी हाँ, आप सभी को एक बार पुनः बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सायंकाल के 3:30 हो रहे हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता मित्र, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं बॉलीवुड अपडेट पर। दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म चांद मेरा दिल और दृश्यम 3 पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ जहां दृश्यम 3 कमाल करती नजर आ रही है, वहीं अब चांद मेरा दिल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बनती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कमाई के मामले में कौन कहां पहुंचा। साउथ के सुपरस्टार एक्टर मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती नजर आई है। सिनेमाघरों में गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ से अधिक रुपए का दमदार कलेक्शन किया था, लेकिन दूसरे ही दिन कमाई का आंकड़ा गिर पड़ा और शुक्रवार की कमाई महज 11 करोड़ रुपए रह गई। ये सवाल उठने लगे कि क्या दृश्यम 3 इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों जैसा कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन तीसरे ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमबैक करते हुए दिखा दिया कि अभी तो इसमें बहुत जोर बाकी है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को फिल्म की कमाई का ग्राफ 24% चढ़ गया। दृश्यम 3 की तीसरे दिन की कमाई 13 करोड़ से ज्यादा रही। बात टोटल कलेक्शन की करें तो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 की अभी तक की कुल ग्रोस कमाई 47 करोड़ रुपए हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में यही आंकड़ा जी हां 100 करोड़ के पार हो चुका है। श्रोता में तो बात लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल की करे तो रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग से लेकर क्रिटिक्स के रिव्यू तक कुछ भी इस फिल्म के फेवर में नहीं गया है। सैयारा जैसी दमदार रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश में धर्मा प्रोडक्शन ने एक और फ्लॉप दर्शकों के सामने पड़ोस दी है। वक्त है कि जब धर्मा प्रोडक्शन को कमर्शियल सिनेमा बनाने के बजाय लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। बात कमाई के आंकड़ों की करें तो इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 3 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन की कमाई में नाम बराबर ग्रोथ देखी और इसने शनिवार को 3 करोड़ रुपए कमाए। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि चांद मेरा दिल फिल्म इस हफ्ते यानी कि फ्राइडे 22 मई को रिलीज हुई थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चांद मेरा दिल की अभी तक की कमाई कुल 6 करोड़ हो चुकी है। श्रोता मित्र, अब हम कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक और आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का यानी कि चांद मेरा दिल फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्र, वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में मौनी रॉय को उनकी नकली मां के रूप में कास्ट किया गया है। इस कास्टिंग ने सोशल मीडिया पर उम्र के अंतर को लेकर बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर कल यानी कि 23 मई को मुंबई में एक कार्यक्रम में लॉन्च के दौरान रिलीज किया गया। हालांकि इसे दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन ट्रेलर कई कारणों से चर्चा का विषय बना है। जी हां, इसमें एक कारण मौनी रॉय भी है। नागिन एक्ट्रेस ने फिल्म में वरुण धवन की नकली मां का किरदार निभाया है। मौनी रॉय की उम्र इस समय 40 है और दिलचस्प बात यह है कि वरुण धवन इस साल जी हां 39 के हो गए हैं। अब दोनों के बीच उम्र का अंतर और मौनी रॉय को मां के तौर पर कास्ट करने को लेकर कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मौनी जो फिल्म में वरुण धवन की नकली मां का किरदार निभा रही है, इसका एक कॉमेडी एंगल हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। तो इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं जी हां इस फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस गीत को हम आपको पूरा सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि समय की कमी है और इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे वांगचो श्रोताओं का समाचार।

0: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेले मिनिसा आली तारीख दियो बार ए पोहासों आजम बाजी पुनी मिनट मुई के विषम के वांचो साइका पांग कपई पोवां कहो पाई फाले वांग का वांग सुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए चाइना डिस शांजी प्रोविंस मा ता हा नगवन हान माइन मंगाई डोंग के थमजन मता बीजो खनंग मिसा जी साम क्या का अंगवा तत क्या ए ची मोंग तो का खू के का ngai एन तो ले हया जू मा पंगनु इंडिया जो खनंग नु सेन मा चाइना डेस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हिया चाइनीज खनंग नु जाउ अंग कॉन्डोलेंस जांगसोन का होले प्राइम मिनिस्टर मोदी ए हया का मनी ता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा होले Public sector oil marketing companies Indian Oil, BPCL, HPCL, Hotampo, Arunachal Pradesh, Khanak Nu Ang, State Ma Pang Nui To, Wai Petrol, He Diesel, Vanti Boma, LPG Satmo Gas Po Hotong, Hoko Ngui Le, Wai Tayanang Taipo Ol, Van Kya Bo Ma, State Ma Haja Supply Mo To Satto, Mai Le, Wai Mok Nui Sat Le, Ngo Tay Le Le, Van Le. Oil marketing companies tham aja bo ma khanak nu ang talakya kamunga mu atat kya khong to halakya vanti hia gas pho shakasan la atat athan ang ta avuka tu ko aba yomaka te ma hothat ma shakasan la sa hai o bo ma pale apuka pau kya ka hong tai pho to ta apao aba hom oil marketing companies tham official ka angau to ti apang ham hai olachu vanne Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu hiya chi cabinet minister tham e state ange pangnu yo district to u om le hotham azam ma angot aso kya extensive district wise review meeting tu so mani aso apo le ashuk to Chief Minister Khandu aja review meeting mo van le ho ke ta social media ka ho ma aya tu so ma infrastructure requirement manpower needs ya khatkha kha kya development motto satho pho pak tiketo ang committee hotham pho kamajing dawa boma haya makhang a commissioner planning ma akho la la kya committee a infrastructure ang kya homoko sat hiya haya hotu malan ang kya zu to hua hai principal secretary hom ma akho la la kya human resources committee tham a district pho to modmi satmi manpower ozong ma obile la alam la sate he la kya pak tiktoi bo ma chief secretary ma akhola la kya ta high level committee tham haja pangnu jo mot sat to hu ha kya ka toi bo ma haja committee tham mokosa kya homokosat outcomes hai angkya tabiku let ba ma wai khanak nu ha to aho angai la pha angkya le van le Arunachal Pradesh Rural Development and Panchayati Raj Minister Ojing Tasing A Mani Itanagar Ma Department of Panchayati Raj Tham Official Website Hiya Gramin Jai Sukhaya Gramin Jai Hitaya Man Ma Zingkya Panchayati Raj Department Tham Angkya Hozan Logo Hoka Daple Rowing Honom kya Mehau Wildlife Sanctuary Division tham le and ke hukur bar ni hom chon chon le lower Dibong Valley district ma rowing ya anini honui ni ba lam masatte kya Mayudia pass honui yang to cha nu ho ham hotai ngan zup kya khong to khanak nu khan zai hai ol kya ta public safety advisory ka kodwa divisional forest officer mito rumi e ko kya haja advisory ka ho ma forest officers tham haja mayudia pass ho noi ma kya military communication post jang to chon chon la cha nu pa ahamate kya ngan zup ang kap dua haja zai le haja ho noi jang to ahamate puzu ma khanak nu khanjai hayo moma talakya picnic ya trekking ang shongta ahamatai yau hai o level le taile desma petrol he diesel 20 tha mani petrol ma liter pa to puli anat paisa pong le boma diesel ma liter pa to puli ban mata paisa pong la tam achan adandwa boma haya kole le en ke ni ban bama yo petrol ya diesel van ti tha litak patongun khau aga ta ku pong le tong chong le satna ka homa ajang ba ja van ti tha yo hale tele le chawanu market to crude oil van ti tha yo dong le hai kole adanang kya mot ngai le sat kya chang le ka ho ivai
1: अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि वांछित श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं रुन एफ एम 103.1 MHz पर। तो चलिए श्रोता मित्र, हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के सिलसिले को आगे रखते हुए आपको सुनवाते हैं तेरे नाम फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्म में गीतों का अंशी। हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे आवारापन फिल्म से मुस्तफा जाहिद की आवाज में। इसी के साथ ही अब हम आपको कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनवा रहे हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म से।

अरिजीत सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र फिल्म के इसे गीत के साथ हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम को फिलहाल विराम देते हैं और आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे ईद उमिस में श्रोताओं का कार्यक्रम। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईदो मिसने कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगर शोला पुची जियानी हूं क्या इन्हीं अमरालिनी एत निचे ईद मिशम्या होला के जी एलो मिखू पीएम नरेंद्र मोदी में शंजी प्रोविंस चाइना मा माइनिंग एक्सीडेंट मा सीगा बा आलमो के बनी इन्हो बदा लगा खा आई दोने प्रेसिडेंट सी जिनपिंग दोने चाइना ची इमो आलमबर्गो कंडोलेंस हागने मो इमो अलाकोगा जी आलमबो है मिशी चिनावे सदा उइदलाने लाहिया खा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में इंडिया ने यूएस में पार्टनरशिप मा स्ट्रांगली शेयर एगा जिदलाने लगा खा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो गो न्यू दिल्ली मा मीटिंग जिगाने कानी कंट्रीज एबेगा मा कॉमन इंटरेस्ट ग्लोबल इश्यूज एमए पू अब इचिबे प्राणे चिचना वेदा वेदलाने लग गया खा ऑयल कंपनीज इंडियन ऑयल बीपीसीएल ने एचपीसीएल में पेट्रोल डीजल दोने एलपीजी सप्लाई है अरुणाचल प्रदेश मा सफिशियंट खा गद लगाने पब्लिक आलमगो पैनिक एजिम न लाने लगा खा आई दोने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ची आहोलो ची न लाने लगेगा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में दोने कैबिनेट मेंबर्स में डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग स्टेट ची जिंदोगा ही बखा कमिटीज गो इंफ्रास्ट्रक्चर अरुदा मैन पावर अरुदा लही एम ए डेवलपमेंट अरुदा पो नाना मॉनिटर एजिना लाने लहया खा रूरल डेवलपमेंट ने पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तसिंग में ऑफिशियल पंचायती राज डेवलपमेंट वेबसाइट दोने में लोगो ईटानगर मा आलोहा खा एच ए स्टेप मने ग्रास रूट्स लेवल मा डेमोक्रेसी पब्लिक पार्टिसिपेशन दोने सिटीजन सर्विसेस प्रणाव के बने अलोहाज खा मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवीजन मा मायुदिय पास रोइंग ने आलो मा आमा मो आगो जीवदा लाने टूरिज्म ट्रैवलर्स दोने ट्रैक लाही पिकनिक एजिमना लाने लाहया खा आई दोने अनुजी का आलम्बो गोबी उसातोने जीजीना लाने लाहेगा पेट्रोल ने डीजल चे

अपे अशो मशलो दिन मेला इन मेगा अप अशलो पोलो

Actually, I do not know.

0: ti yu ma nu agoko sake ya do la ru ba pa we po ye ya
1: अभी आप सुन रहे थे ईदू मिसमी श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि ईदू मिसमी श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। तो चलिए हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और जूनिता गांधी की आवाजों में।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे भूत बंगला फिल्म का ये खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत एनिमल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे और रोमियो फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म में गीत कार्यक्रम के अब हम समापन पर आ पहुंचे और इसी के साथ ही मेरे जाने का वक्त भी हो चला है। जाने से पहले आपको बता दें कि इस दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए थे प्रसारण निष्पादी का गैरते तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और हमारे अन्य सहकर्मी। और हाँ दोस्तों, आगे आपसे जुड़ने वाली है आपकी अपनी चहेती आरजे अपर्णा हमारी तीसरी प्रसारण सभा के साथ। फिलहाल कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखे अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

0: अभी आप तांसा में समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे तांसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करने पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों वो कहते हैं ना कि आप नेक कार्य निरंतर करते रहे, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। संचालन निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता टिम टिम तथा स्टूडियो और HPT में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के तह दिल से स्वागत करते हुए आप सभी के अपनी आर्जी प्रणाम मौजूद है आप सभी के खिदमत में। करने आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम। जी हाँ दोस्तों, और साथ में हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे नीलम का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर एंटरटेनमेंट की है और जाते जाते मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करके गई है। थैंक यू आरजे नीलम। तो दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे, जी हाँ, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: गुड इवनिंग ईटानगर।

गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम आप सभी को बता दें ये एक कंपोजिट प्रोग्राम है जहां पर ना हम आप सभी की केवल मनोरंजन करवाते हैं बल्कि कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी आप सभी से साझा करते हैं और कभी कभार छोटी जो है मॉरल स्टोरीज भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज 24 मई है तो आज जो है विश्व तथा भारत के इतिहास में क्या क्या इतिहास के पन्नों में हुआ है वो जरा सी मैं आप सभी से साझा कर दूं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है 1875 में 24 मई का दिन जो है महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी। मोहम्मदीन एंग्लो इंडियन यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कि अब प्रेजेंट में है उसकी स्थापना आज ही के दिन यानी कि 24 मई 1875 को की गई थी। 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी बेस आईएनएस बिरबहु जो है विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था। 1993 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को उनके शानदार फिल्मी सफर के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। 2001 में नेपाल में आज ही के दिन 15 वर्षीय तेम्बा थ्योरी शेरपा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज ही के दिन पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे। अगर हम विश्व की इतिहास को देखते हैं तो 24 मई का दिन बहुत ही खास रहा। 1819 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था जिनके नाम पर ब्रिटिश शासन के दौरान एक लंबे युग विक्टोरियन युग का नाम भी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 1883 में ब्रुकलिन और मैनहट्टन के आपस में जोड़ने वाले न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1904 में टाटा समूह यानी कि टाटा ग्रुप के संस्थापक मशहूर उद्योगपति जमशेद जी टाटा का निधन आज ही के दिन हुआ था। अगर हम बात करें जन्म की तो 1899 में 24 मई को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और बंगला कवि विद्रोही काजी नजरुल इस्लाम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1543 में यूरोपियन खगोल व गणित जो है निकोलस कॉपरनिकस का निधन हुआ था जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो है ना ये कुछ दिलचस्प जानकारी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो चलिए अब मैं बातें कम और काम ज्यादा करते हुए आप सभी को सुना देती हूँ कुछ प्यार भरे गीत। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस धुआंधार गीत के साथ ही हमारी आज की जो है गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम की जो ये सेगमेंट है ये अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजरानी और इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल, आपसे बस कुछ ही देर में आप हिंदी तथा अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तालु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पूर्ण मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडे ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट में 24 लोग मारे गए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकारिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहे। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रही है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती है। दोनों नेताओं ने खारी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो ने भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमरीकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री कल 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश का नाम बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन पशुपालन और दूध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दूध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कार्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना दिया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कार्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाए। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट में से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी की मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। धमाके के बाद एहतियाती के तौर पर पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को भी अभी भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शाउनशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शाउनशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेट्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही एलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए हैं। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विविकरण से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. The news read by Shabrashachi Bhattacharya. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Dr. Jaishankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He said both countries' ties impact and influence the world and that they have converging interests across several regions. He noted that discussions took place in a complex global environment and expressed confidence in open and productive talks. He also highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security. Meanwhile, Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on all key issues that will define the new century. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or traveling to those countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. Earlier, the World Health Organization, who had declared Ebola outbreak a public health emergency of international concern following the reported outbreak of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. India has dispatched the first tranche of urgent medical supplies and protective kits to the Africa Centers for Disease Control and Prevention today. In a post on X, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the supplies have been sent in response to the emerging Ebola public health emergency. He added that India remains committed to supporting Africa in responding to the crisis in coordination with the African Union. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an update regarding the Class 12 post-result process after technical issues on 21st and 22nd of this month led to incorrect fee deductions in some cases. In a statement, CBSE said that the issue occurred during applications for scanned copies of evaluated answer books. It added that in some instances, excess payment was deducted, while in others, lesser amounts were charged. The CBSE noted that in all cases of excess payment, the exact excess amounts will be refunded to the same payment method which was used for payment. Similarly, in cases where lesser payment was deducted, candidates shall be informed separately regarding payment of the balance amount if required. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Jyotiraditya Scindia highlighting how the five treasures of Kanchen Dongza continue to illuminate Sikkim's journey, paving the way for Biksit Sikkim 2047. In a social media post, Mr. Modi said that the article portrays Kanchen Dongza as the protector of the land, memory and consciousness of Sikkim. Indian Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the NE region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in franchise as they have already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata at 7:30 p.m. That's all in this news bulletin. Namaskar.
3: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. समाचारों के बाद आइए सुनते हैं नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम.
4: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ रंगजा वनपा बाजी सान पोडांग ने नांगनोकते प्रोग्राम छोतारन ठजा मेजंग रोकनी वन ब्लितारे दो बजा गिनतोय का तेलियन तांगजांग मा China diakwa Chengzi province nang Koila mine nang Hongpuok explosion dang lama aja thaminyan lama ri wakta chuang ko Prime Minister Narendra Modi ma ate Hung Chi Palik danging pa China te president Xi Jinping nang choyekatoi

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे नोक्ते समाचार। और अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2000

2025-26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण

0: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एक एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ट्राइब प्रोग्राम के साथ।

दोस्तों, इवनिंग ड्राइव हो और हम आपसे बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज एक और बहुत ही एक प्यारा सा एक स्टोरी है मेरे पास में आप सभी के लिए। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहा करता था। बहुत बहुत जो है वो जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन अक्सर उसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी। गांव के लोग कहते कि माधव बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें धैर्य की कमी है। उसे हर काम जल्दी करना पसंद था। अगर कभी रास्ते में कोई रुकावट आ जाती तो वो गुस्सा करने लगता। और जो है वो हार मान लेता। आगे आगे माधव क्या करता है देखते हैं। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बहरहाल एक और नगमा आप सभी के लिए एंजॉय कीजिए।

दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह से माधव स्कूल जा रहा था। गांव के बाहर छोटी सी पगडंडी का रास्ता पड़ता था। बरसात के बाद वहीं की मिट्टी जो है फिसलन भरी हो गई थी। चलते चलते अचानक उसका पैर नीचे एक पत्थर पर पड़ जाता है। वो ठोकर खाकर गिर गया। उसके घुटने छिल गए, उसके कपड़े गंदे हो गए और चेहरे पर गुस्सा चढ़ गया। वो उठा और पत्थर को देखते हुए बोला, तूने मेरे सारे रास्ते रास्ते भर में मैं इतना अच्छा से आया, बट तू जो है मेरे रास्ते में क्यों आया? तेरे कारण मैं गिर गया और गंदा हो गया। पास ही एक बूढ़े व्यक्ति जो है किसान जो है काम कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा पत्थर को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं, हर ठोकर कुछ सिखाती जरूर है। अगर समझो तो यही पत्थर तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। माधव ने हैरानी से पूछा, कैसे? तो ये तो बस एक बेकार सा पत्थर है जिसने मुझे गिरा दिया। किसान आगे क्या कहते हैं सुनते हैं एक और गीत के बाद। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, बुजुर्ग ने आगे कहा कि बेटा, इस पत्थर को देखो, ये रास्ते में इसलिए है क्योंकि इसे किसी ने हटाया नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे हटा दो और दूसरों के लिए रास्ता आसान कर सकते हो। और अगर जरा सा सोचो तो तुम इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो और ऊंचाई तक पहुंच भी सकते हो। माधव कुछ नहीं बोला, बस रास्ते का पत्थर को हटाकर आगे चल दिया। जी हाँ, किसान की बात उसे समझ में आ गई। और जब वो स्कूल पहुंचा तब उस दिन उसे एक प्रोजेक्ट दिया। जीवन में अपने आने वाले रुकावटें और उनसे मिलने वाली सीख, माधव ने मन ही मन सोचा, आज तो मैंने खुद ही एक रुकावट झेली है। घर लौटते समय उसने फिर उसी पत्थर को देखा। इस बार उसने उसे लात नहीं मारी और वो सोचने लगा, क्या सच में यह पत्थर मेरे रास्ते का काम आ सकता है? और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हर एक चीज जो है हमें कोई ना कोई बातें सिखाकर जरूर जाती है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हमारे इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम जो है अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे शाम की महफिल के साथ। तो बने रहे, जी हाँ, अरुण एफएम के साथ, और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जी। हाँ दोस्तों कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जनाब, जो तय नहीं होते मगर नजदीकियां कमाल की रखते हैं। जी हाँ, ऐसे ही रिश्ता हमारे साथ आपका भी है, कमाल का रिश्ता है। तभी तो हम हाजिर हो जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम से लेकर। बहरहाल पेश खिदमत है शाम की महफिल, आपकी शाम को परफेक्ट एम्बियंस देने के लिए आ गए हैं हम दोस्तों। आज तो वैसे भी संडे है, ऐसे में हो सकता है रिलैक्स कर रहे हो या फिर बाहर घूमने गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर छुटपुट बारिश भी हो रही है। और शाम का वक्त है, इश्क भरी चाय या कॉफी की चुस्कियां लेते हुए आप अपने किसी खास को याद कर रहे हो, खास स्पेसिफिक पर्सन के साथ में बैठे हो। और ऐसे में जी हाँ दोस्तों, अरुण FM आप सभी के लिए आज आया है लेकर बेहद प्यारे प्यारे गीत, तो कमाल हो जाए, है ना। वो कहते हैं ना कि बड़ी गहराई से चाहा है तुझे, बड़ी दुआओं से पाया है तुझे, तुझे भूलने की सोचू भी तो कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। अब जब मैं गीत पेश खिदमत करने वाली हूँ, बिल्कुल आप सभी को भी दीवाना कर देगा मेरी तरह, और आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है।

इस बेहद खूबसूरत सी गीत के बाद एक और गीत पेश खिदमत करने जा रही हूं जो सीधे दिल को छू जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू हो, सादगी हो और प्यार की मासूमियत हो। जी हाँ दोस्तों, इस सादगी और जो है पुरानी सुनहरे दौर की मीठी याद, गांव की और प्यार भरे इस नगमे को जो है मैं आप सभी को डेडिकेट कर देती हूँ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं शाम के महफिल के साथ, और इसे आप सब के लिए पेश किया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे प्यार की दास्तां हमने अपने दिल में लिखी है, ना थोड़ी ना बहुत बेहिसाब लिखी है। क्या करो हमें भी अपनी दुआओं में शामिल, कि क्या करो हमें भी अपनी दुआओं में शामिल, हमने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिखी है।

0: के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल का जो सेगमेंट है वो अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल ले लेते एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट लेकर। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म गीतों के साथ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस धुआंधार गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे आदि समाचार। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, तथा साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार प्रोग्राम के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के कलाकार के इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में दोस्तों हम एक ही अदाकार, फनकार, गीतकार, संगीतकार के मशहूर फिल्मों के सॉन्ग्स आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही उनके जीवन के कुछ राज आप तक पहुंचाते हैं, खोलते हैं कुछ रोचक बातें, इनसे जुड़ी जो है हम बातें आप सभी से साझा करते हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रही हूं जो कि जिनको कि एक्चुअली में कोई जो है परिचय की मोहताज बिल्कुल तो वो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपने जमाने से लेकर उस जमाने जब 70 के दशक चल रहे थे तब से लेकर आज के दौर तक कौन उनको नहीं जानता और कौन उनके खूबसूरती का, उनके डांस का कौन दीवाना दीवानी नहीं है। मैं भी हूं। जी हाँ दोस्तों, एंड लेट मी टेल यू, शी इज नॉन अदर देन, जी हाँ, हमारी रेखा। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की सदा बहार अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहा जाता है, वहां हुआ था। उनका जो असली नाम है वो है भानु रेखा गणेशन। 70 के दशक में उन्होंने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की थी

और अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सुंदरता और रहस्यमय जिंदगी के लिए जानी जाती है। अगर हम कहें इनके माता पिता के बारे में अगर हम बात करें, तो उनके पिता जो है तमिल सुपरस्टार, जो है तमिलनाडु के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन जो है वो थे, और उनकी माँ पुष्पावली एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। चूंकि रेखा के माता पिता ने जो है फॉर्मल शादी नहीं की, इसलिए उनके पिता ने आधिकारिक तौर पर रेखा को अपना नाम देने से इनकार कर दिया, और जिसके कारण जो है उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। रेखा को परिवार की आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही छोटी सी उम्र में ही स्कूल छोड़नी पड़ी, और वो फिल्मों की ओर जो है अपना मुंह वो उस तरफ में मोड़ दी, और जो है बचपन से ही वो काम करने लगी। तेलुगु फिल्म 1966 में रंगोला रत्नम में उन्होंने पहली बार बतौर हीरोइन के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया, और उनकी हिंदी फिल्म जो है उनकी जो हिंदी फिल्म थी वो थी सावन भादो, जो 1970 में आई थी। शुरुआत के दौर में उनके सांवले रंग और वजन को देखकर उन्हें काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों बातें करेंगे इनके बारे में और भी, लेकिन मैंने चुनिंदा गीतों को आप तक पहुंचाने का निश्चय किया है उनके फिल्मों से। तो चलिए चलते हैं गीतों का उस सफर में जो कि रेखा की जिंदगी के सुपर डुपर सॉन्ग्स थे और हिट फिल्म्स थे।

0: दोस्तों, अगर हम इनकी फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो हम बात ही क्या करें, क्योंकि जितने भी फिल्म्स आए सब के सब एक से बढ़ के एक सुपर टुपर हिट रहे। वैसे इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा जो है, इनकी फिल्में जो आए वो जितेंद्र के साथ में आई और विनोद मेहरा के साथ में आई, राजेश खन्ना के साथ में आए और अमिताभ बच्चन के तो क्या ही कहने। जी हाँ दोस्तों, कुछ चुनिंदा फिल्मों का नाम मैं लेना जरूर चाहूंगी, जैसे कि उमराऊ जान, खून भरी मांग, खूबसूरत, सिलसिला, घर, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, ऐसे अनगिनत फिल्में हैं जिनके एक ही रास्ता जैसी कई फिल्में जो है राजेश खन्ना के साथ में भी आई है इनके फिल्म, जो ढेर सारी फिल्म, मैं इनके फिल्मों के बारे में क्या ही कहूं और कितना ही नाम लो, जिस फिल्मों में इन्होंने काम किया वो सुपर डुपर हिट रही, लेकिन सबसे ज्यादा हिट रही अमिताभ बच्चन के साथ दोस्तों। और अमिताभ बच्चन के साथ 70 और 80 के दशक में इनकी जोड़ी इतनी पॉपुलर रील में नहीं रियल लाइफ में हो गई कि ये चर्चा के विषय बन गए। यहां तक कि अमिताभ बच्चन तो शादीशुदा थे, इसी दौरान जो है फिल्म जो है सिलसिला बनने के लिए रेडी हो गया और इसके लिए डायरेक्टर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इसमें शादीशुदा लाइफ की जो है झलक अमिताभ बच्चन की कुछ रियल स्टोरी से भी मिलती है। जया बच्चन को मनाना बहुत मुश्किल था। जया बच्चन ने सीधा कहा कि इस फिल्म का एंडिंग ये होना चाहिए कि ये जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो मेरे पति के, यानी कि फिल्मी पति और रियल पति के जिंदगी से भी चले जाना चाहिए, तभी मैं इसमें काम करूंगी। और आखिर में ऐसे ही हुआ और दोनों की प्रेम कहानी इतनी मशहूर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि आज भी अगर आप कहें कि आप सबसे बेस्ट जोड़ी में से किनको देखना चाहेंगे तो लोग एक ही बात बोलेंगे, अमिताभ और रेखा की जोड़ी। तो रेखा और अमिताभ की तो प्रेम कहानी, वो तो रूहानी प्रेम कहानी है दोस्तों। रेखा के मन में भले ही अमिताभ बच्चन इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जी हाँ, अमिताभ बच्चन को अपने दिल में आज तक रेखा ने बसाए रखा है। लीजिए एक बहुत ही खास जो है गीत मैं आप सभी के लिए पेशे खिदमत करती हूँ, एंजॉय कीजिए।
1: वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, वक्त बहुत कम रह गया है और रेखा के बारे में बातें करना बहुत ही बाकी है। रेखा को विनोद खन्ना के साथ में भी उनका अफेयर्स चला जो कि टिका नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं टिका। बाद में आखिर में उन्होंने 1990s में उन्होंने दिल्ली के एक बहुत ही अमीर व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी के महज एक साल के बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद रेखा पूरी तरह से टूट गई और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर कोई बात नहीं की। अगर हम उनके फिल्मों के जो बेहतरीन फिल्मों के लिए उन्हें पुरस्कार मिला उसके बारे में बातें करें तो उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला और 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से भी नवाजा गया। उनके जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन रेखा की तरह खूबसूरत और अपने आप को मेंटेन करने वाली जो है, ऐसी अपने दौर की जो है 70 की दशक की बहुत कम ही हीरोइन है जो अपने आप को रेखा की तरह इतने चुस्त दुरुस्त और बहुत खूबसूरत रखती है। तो चलिए, बातें तो हो गई रेखा के बारे में, एक और गीत मैं आप सभी को सुना दूं। अगर मैं उमराव जान फिल्म का गीत नहीं सुनाऊंगी आप सभी को तो शायद रेखा के बारे में बातें करना कुछ ही अधूरी सी रह जाएगी। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है दोस्तों, फिल्म घर से, और जो है रेखा की एक बहुत ही अच्छी फिल्म में से है। हम ये तो विश करेंगे कि रेखा आगे भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करे और शायद हमें सिलसिला 2 भी देखने को मिले और उनकी ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे। उनकी सेहत की कामना करते हुए हम अपनी आज के कलाकार प्रोग्राम को यहीं पर संपन्न करते हैं। और आप सभी को बता दें कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का दोस्तों। जी हाँ, तो ले लेते हैं कुछ पल के लिए आप सभी से अलविदा। मिलते हैं 7:05 पर। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम और अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है, अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है वुमन एंड फैमिली प्रोग्राम मेरी बात का। आज आप इसके तहत एक साक्षात्कार सुन सकते हैं एंटरप्रेन्योर जो है मिस तुमी रिबा के साथ और सूत्रधार होंगी गैर अते।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोता, आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में है वीमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मिसालों में से एक तुमी रिबा, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेन यम्स कैफे एंड बेकरी अरुणाचल प्रदेश। तो तुमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: तो जैसे कि आप जानती है कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है, खास करके जो हमारे महिला सहेलियां है, जो यूथ है, उन लोगों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है हम ओवेन यम्स के जो स्पेशलिटी है, उसके बाद जो फ्लेवर्स एंड रेसिपीज के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो जर्नी है एक बेकर के तौर पे, उसको अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा महिलाओं के और यूथ के इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है उसको हमारे श्रोताओं के साथ, जो जर्नी है उसको शेयर करें और उन्हें और इंस्पायर करें।
2: तो मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ अराउंड 2017 के आसपास
1: जी।
2: तो एक्चुअली मैंने प्रॉपर कुछ कोर्स नहीं किया ये डिग्री के फील्ड में। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन डिजाइनिंग भी किया है
1: जी।
2: तो फैशन डिजाइनिंग किया था, बट देन लाइक बहुत कुछ हुआ एंड देन मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे खाने का बहुत शौक है, तो आई एम लाइक अ फूडी। तो क्या हुआ कि लाइक घर पे आई यूज टू बेक अ लॉट, तो बेक बहुत करती थी एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली को यू ऐसे ही रेसिपी टेस्ट करा, फिर किसी को खिलाया, फीडबैक लिया कैसा है क्या है। तो ये सब करते करते लाइक एक दो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए।
1: अच्छा,
2: फॉर बर्थडे केक्स।
1: अच्छा, घर पे बेक।
2: घर पे हाँ। तो इनिशियली कोई स्टोर नहीं था, तो एक दो ऐसे लाइक फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो गया तो उन्होंने बोला कि चलो एक केक बना दो, तो इट वॉज अ हॉबी। तो आई वॉज लाइक हैप्पी, ठीक है, खाने वाला कोई मिल रहा है,

0: साल लाइक वन 1-1.5 साल में भी ना तो होम बेस्ड ही था, हम
1: हाँ
0: लोग बस केक्स का ऑर्डर लेते थे, बचे
1: अच्छा
0: केक्स। तो तब समय क्या था कि कैफे कल्चर इतना नहीं था यहाँ पे,
1: हाँ
0: जैसे अब भी है वैसा नहीं था, तो उतना ध्यान में भी नहीं आया कि हाँ मैं भी एक कैफे भी कर सकते हैं। तो वो जर्नी जो था 1-1.5 साल का, उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि हाँ यही करना है, जब आपको पता चलता है कि हाँ यही करना है, तो मतलब आइडियाज और आने लगा कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं मे बी इसके आसपास, केक्स के आसपास। तो सोचा कि चलो एक कैफे करते हैं। बट देन उसके लिए फिर क्या हो गया कि यू नीड लाइक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर तो वो एक इश्यू आ जाता है। अभी आपका ये जो है स्टार्टअप्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या आपके पास लाइक वो अमाउंट नहीं है टू स्टार्टअप, तो वो एक थोड़ा मुश्किल आता है। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ फिर, बट समहाउ आई मैनेज्ड। एंड देन इनमें इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत थोड़ा सा हेल्प रहा, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक स्कीम था, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना, तो उसमें अप्लाई किया, तो उसमें एक ग्रांट मिला, तो विच हेल्प्ड अ लॉट टू स्टार्ट माई फर्स्ट स्टोर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में है, अभी भी चालू है मेरे ख्याल से ये योजना। तो इफ कोई नया एंटरप्रेन्योर जो जिनका आइडिया बहुत अच्छा है एंड देन फुल प्रूफ है एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करना
1: हाँ
0: पड़ता
1: वो
0: है,
1: तो है।
0: इट्स लाइक इजी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि ये तो बस केक बना रहे या तो ये जस्ट गारमेंट बना रहे, मतलब इजी नहीं है, बहुत सारा चीजें चलता है जो कि आपको ओवरलुक करना पड़ेगा, देन बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाए, एंड देन विजन होना पड़ेगा उसके लिए आपको,
1: वही
0: तो वो जरूरी है।
1: जी, आपने अभी खुद बताया कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया
0: जी
1: हुआ है,
0: हाँ
1: और जहां तक हमने आपके बारे में सुना है, आप उसमें गारमेंट बिजनेस में
0: जी
1: भी थे,
0: जी
1: तो क्या अभी दोनों साथ साथ चल रही है, या आप बेकरी है उसी पे है, ओवेनियम्स पे ही
0: नहीं
1: है?
0: अभी तो 100% बेकिंग में है
1: अच्छा,
0: अभी।
1: आपने जो आपका गारमेंट्स का जो
0: हाँ
1: बिजनेस है
0: हाँ
1: उसको ड्रॉप कर
0: ड्रॉप
1: दिया?
0: मतलब ऑन होल्ड रखा,
1: हाँ
0: बट देन मे बी अगर फ्यूचर में लाइक टाइम, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना होता है, तो वो आप 2-3 एक साथ, हाँ कोई लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक को जो अभी स्टार्ट किया है उसको अच्छे से टाइम दे के थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद मे बी अगर कुछ और होता है तो
1: हाँ, इसमें
0: देखिए।
1: आपका ये एक आपका हॉबी भी रहा है
0: हाँ
1: तो। और लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें सही नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या
0: हाँ
1: फिर उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते।
0: हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो करियर चीज नहीं है, ऐसा नहीं। इट वॉज जस्ट कि एक हॉबी शिफ्ट हो गया, एक पैशन शिफ्ट हो गया, एक सर्टन पॉइंट में वो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो इज लाइक कि इसमें मेरा ज्यादा मन है, तो उसके मुताबिक मैंने अपना थोड़ा सा जो करियर पाथ है उसको चेंज किया।
1: हाँ, जब इंटरेस्ट आपका होता
0: हाँ
1: है, जब आप मतलब पैशन के साथ करता है,
0: जी
1: तो वो
0: हाँ
1: थोड़ा आसान लगता
0: वही
1: है
0: हाँ
1: और मतलब इजी हो जाता
0: जी
1: है। तो जैसे जो बिजनेस है आपका, या फिर कहे कि ओवेनियम्स का जो सक्सेस है, उसको हम उसके आउटलेट से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया 2017 में आपने होम बेस्ड शुरू
0: जी
1: किया
0: जी
1: था, तो अभी तो 23 है,
0: 23
1: वो
0: हाँ
1: कम समय में, क्योंकि बीच में कोविड भी रहा
0: कोविड भी रहा
1: तो
0: है
1: उसमें
0: जी।
1: भी काफी परेशानियां होगी। कोविड में तो बहुत सारी चीजों का बेचना वो तो मुमकिन नहीं
0: जी
1: था,
0: जी
1: तो इतने कम समय में देखा जाए तो आपका तो कुछ साल का ही बिजनेस रहा है, अगर हम कोविड को अगर बीच में से अगर हटा दे तो, कोविड वाला सीजन को। ऐसे में आपका 3 आउटलेट्स होना मतलब बहुत बड़ी सफलता है। तो
0: थैंक
1: और इसके
0: यू।
1: बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको ओवेनियम्स को ग्रांट भी मिला है,
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सक्सेस है ओवेनियम्स के लिए, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए।
0: थैंक
1: तो
0: यू
1: इसमें
0: सो
1: मैं
0: मच।
1: ये जानना चाहूंगी कि क्या ओवेनियम्स ओवेनियम्स के 3 आउटलेट्स है, उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहां पे काम करते हैं?
0: ओके अभी अगर मेरा 3 आउटलेट्स हैं हमारा अब, एंड देन हमारा एक सेंट्रल किचन है, तो उसको सबको मिला के इन अराउंड 16 तो

0: 17 लोग हैं
1: अच्छा,
0: ओवरनाइट
1: तो
0: के
1: वो लोग भी
0: अंदर।
1: एक ट्रेन बेकर है?
0: नहीं, यहाँ पे क्या है कि ट्रेन बेकर मिलना थोड़ा मुश्किल है,
1: अच्छा।
0: आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिनने काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए।
1: हाँ
0: तो मैंने क्या किया कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लोग बुलाए, एम्प्लॉयज हायर किए, देन रेसिपी दे दिया, बनाओ कर दिया, ऐसा
1: हाँ
0: नहीं है। तो आई
1: अच्छा।
0: यूज टू बेक ऑल्सो, इवन आई बेक अभी भी। तो मैंने क्या किया कि आई लाइक यहाँ पे दो तीन लोग हायर किए यहाँ लोकली,
1: हाँ
0: मोस्टली वेमेन, लाइक आप बोल सकते हैं कि 90% वुमेन एम्प्लॉई
1: विमेन।
0: है। हाँ, तो दो तीन मैंने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया पहले
1: अच्छा।
0: कि ये रेसिपी से ये बनाने हैं। उसके बाद हमने लाइक मैंने जो क्यूरेट किया, मे बी मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीजें हैं, मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये लाइक मार्केट में पसंद किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने मेन्यू रेडी किया एंड देन स्टाफ को ट्रेन किया, खुद ही किया मैंने सब कुछ।
1: अच्छा।
0: तो उसके बाद लाइक वो चेन बनाना पड़ता है फिर ना, तो एक चार स्टाफ है, मे बी उसके नीचे और दो लगा दो, फिर उनको सीखने दो, ऐसे करके धीरे धीरे वो स्टाफ ये बनने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोफेशनल्स है, ट्रेन प्रोफेशनल्स ज्यादा नहीं मिलते,
1: हाँ, अपने
0: क्योंकि
1: अरुणाचल
0: हाँ
1: में।
0: अरुणाचल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी
1: हाँ,
0: चाहिए
1: वही वही।
0: तो स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है लोगों के पास, जो स्किल एक्चुअल स्किल ट्रेनिंग है ना।
1: हाँ।
0: यहाँ पे क्या होता है कि लोग पढ़ने में लगे रहते हैं, विच इज नॉट बैड, जो गलत नहीं है,
1: हाँ,
0: और सबका अपना अपना एक
1: एम होता
0: एम
1: है।
0: होता है, करियर को लेके अपना चॉइसेस अलग
1: हाँ,
0: अलग होता
1: चॉइसेस
0: है।
1: अलग
0: बट
1: है।
0: देन कोई कोई अगर इसीलिए एक जिनको इंटरेस्ट है कुछ फील्ड में, नॉट जस्ट बेकरी या
1: हाँ।
0: कोई अदर फील्ड जो भी हो, एक स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास वो स्किल है तो बिना सर्टिफिकेट के भी आपका स्किल को देख के आपको कोई हायर कर लेगा
1: हाँ
0: उसमें से।
1: हाँ तो उसमें भी आप कमाई है वो कर
0: हाँ, वो
1: सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं, वो
1: तो
0: स्किल ट्रेनिंग होना जरूरी है।
1: हाँ, ये जो ट्रेनिंग है वो बेकिंग का, क्या ओवन यम्स देते हैं लोगों को? अच्छा।
0: अभी फिलहाल तो नहीं है, हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये भी ऐसा है कि मेरा जो मन है, अगर इफ आई स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देना चालू करूं अगर, तो प्रॉपर एक प्लेस होना है, इक्विपमेंट्स होना है, क्योंकि आप ऐसे थोड़ा सा सिखा दो एंड छोड़ दो वो भी नहीं होता ना।
1: हाँ।
0: तो अच्छे से एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, एंड देन टाइम
1: अच्छा,
0: मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। बट
1: ओके।
0: देन इन फ्यूचर हम
1: हाँ,
0: लोग प्लान तो कर रहे
1: उसके
0: हैं।
1: लिए किचन भी थोड़ा अलग,
0: किचन,
1: आप जहाँ
0: हाँ
1: बैक करते हैं उस पर तो शायद
0: उसमें
1: नहीं
0: नहीं हो
1: हो
0: सकता
1: पाए।
0: है। हाँ, तो
1: अच्छा।
0: अलग से एक स्पेस होना पड़ेगा, एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए चाहिए होगा, तो और प्लस टाइम भी बहुत देना पड़ेगा
1: हाँ,
0: उसमें।
1: वही वही। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिस अभी आपने सुना कि तुम्ही जी जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद
0: जी
1: से
0: जी
1: अपने पसंद और हॉबी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना सीखा है और इतना किया है कि वो अभी बाकी लोगों को भी रख सकते हैं, काम दिला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक अभी के जमाने में एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। और जैसे अभी आपने बोला कि हर कोई अभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, हर किसी को तो इस जमाने में सरकारी नौकरी मिलने से रहा,
0: हाँ, वो तो पॉसिबल
1: और नहीं
0: नहीं।
1: मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होके अपना लाइफ, मतलब अपना जो टाइम बर्बाद करना, वो भी तो किसी भी तरह
0: हाँ,
1: से सही नहीं है। तो जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और हो सकता है कोई चाहते भी है लेकिन जैसे शुरू करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आइडियाज होने से भी कुछ लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, ऐसे भी होंगे? या छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुछ आइडियाज है वो आपके हिसाब से आप कुछ हमारे श्रोताओं को शेयर कर दे तो बेहतर होगा।
0: अभी तो स्टार्टअप के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, एंड देन आजकल बहुत सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने टूरिज्म का बताया अभी आपको। उसके बाद अभी यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट

0: पार्क भी है। ये है आपका इधर किंग कप स्कूल के आसपास में है।
1: अच्छा, नीति विहार।
0: नीति विहार, हाँ। तो इनका भी एक प्रोग्राम चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें भी इन लोग ग्रांट देते हैं, एट द सेम टाइम इन लोग आपको मेंटोरशिप भी देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सारे चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आजकल के जमाने में, क्योंकि पहले इतना ये सब नहीं था। आजकल सरकार भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं सरकार। तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह काफी सारा अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, एंड देन उसके लिए आपको अपना जो आइडिया है, आइडिया आपका बहुत सही होना पड़ेगा कि आपको वो ग्रांट मिले। तो आइडिएशन मेरे ख्याल से उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एंड देन आपका स्किल, कि ऐसा नहीं हो कि जस्ट आइडिया है बट वो बनेगा कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा वो चीज। तो उसमें आपको बहुत सारा चीजें, स्किल बेस्ड होगा, टेक बेस्ड होगा, तो उसमें कैसे आप आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया है यहीं पे सब सीमित है, आगे उसको कैसे लेके जाना है वो सोचना पड़ेगा। उसके बाद उस हिसाब से आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको ग्रांट्स भी अवेलेबल है आजकल काफी सारा।
1: थोड़ा अवेयरनेस भी होना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ वहाँ पता करना पड़ेगा। हाँ, और जहाँ तक हम जैसे लोग समझते हैं जो स्किल्स है, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो भी मतलब बहुत जरूरी हो,
0: बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा।
1: क्योंकि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो अगर 5 दिन 10 दिन भी ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको सैलरी तो उतना ही अमाउंट आना ही है। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें तो जहाँ पे मेहनत गई वहाँ पैसे भी गए, उसके बाद क्वालिटी गए वहाँ भी आपके मतलब, और करियर भी विद इन कुछ समय में ही खत्म होने का भी चांसेस रहता है,
0: वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें आपको मतलब परसिस्टेंट होना पड़ेगा, एंड देन इसमें क्या है कि मैंने जितना देखा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। लाइक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक आई यूज टू बेक अकेले।
1: अच्छा।
0: रात को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेन्ड, आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, तो बहुत सारा चीजें पता नहीं था कि कैसे होना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मे बी योर स्लीप
1: तो होगा ही,
0: तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा फिर आपको। जो जो लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको।
1: जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, या फिर सस्टेनेबिलिटी जो है। तो इस बीच अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस तुमी रिबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेनियम्स कैफे एंड बेकरी ईटानगर, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमी जी, अगर हम ओबेनियम्स की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो ओबेनियम्स को आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए आप मेंटेन रखते हैं, क्या स्पेशलिटी है ओबेनियम्स की?
0: तो हमारा बेसिक जो बिजनेस का आइडिया है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग का जो बेक्ड गुडीज है, जो हम बेक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इट्स फ्रेश, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके लिए लाइक एक दो दिन आप चालू करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, दिन में इतना क्वांटिटी बनना सही है। तो हम लोग उस हिसाब से कम बनाते हैं कि एवरी डे हम लोग फ्रेश चीजें बनाएं, क्योंकि क्या यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा पुराना मिलने से आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, और हमको भी सर्व करना वो पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या ट्राई करते कि हमारा जो बेक्ड गुडीज है वो फ्रेश रहे, और स्वीटनेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज्यादा स्वीट नहीं खाते, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम ज्यादा ध्यान उसी पे रहता है हमारा।
1: और अगर हम क्वालिटी डेडिकेशन की बात करें तो दोनों ही बराबर है, या मतलब कैसे, जिस किस पर ज्यादा हमें काम करना चाहिए?
0: मेरे ख्याल से तो बराबर है।
1: बराबर। और जो लोग जो लड़कियां हैं जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया जिन्होंने अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया अभी जॉब के लिए या ईटानगर बैठे हैं या फिर जो अपने गांव में भी बैठे हो और या फिर इवन जो होम मेकर्स है जो घर पर है उन लोग भी अगर मतलब ये बेकिंग दुनिया में मतलब इसमें अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे जैसे आपने भी घर से ही शुरू किया तो घर बैठे ही थोड़ा सा कम खर्चा में थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें बेकिंग में भी ऐसे कुछ है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसा कमाना चाहे तो क्या वो भी कर सकते?
0: हाँ कर सकते हैं डेफिनेटली, ये आप एक पार्ट टाइम हॉबी के टाइप भी कर सकते हैं बट उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट हल्का सा करना पड़ेगा क्योंकि बेकिंग ऐसा है कि आप थोड़ा सा अभी बेक कर लिया थोड़ा बाद में बेक कर लिया वो नहीं होता है तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ बट होम बेस्ड कर सकते हैं दैट्स इजी, थोड़ा सा वही टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है
1: वो अगर
0: समय लेते हैं जैसे लोग सोचते हैं कि केक बहुत जल्दी बन जाता है ऐसा नहीं, एंटायर प्रोसेस है ये एक ना एंड देन टाइम काफी लेता है
1: और अगर उसको आप एक बिजनेस पर्पस के लिए बेचने के लिए बना रहा है तो परफेक्शन भी जरूरी है ना। वो भी सही बात है। तो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें चूंकि ये महिला जगत कार्यक्रम है महिलाओं के लिए है तो जो अनकन्वेंशनल जॉब है उस पे बहुत सारे लड़कों को हम देख सकते हैं और अभी तक का जो हमने जो देखा है इवन सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन मतलब महिला उसमें बहुत कम है तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: कम तो है बट देन अभी लोग बहुत सारे लड़कियां आ रहे हैं लाइक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अप एंड राइजिंग है एंड इसमें मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है बिकॉज मेरा भी अगर मैं जर्नी देखूं अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता नॉट फाइनेंशियली बट आपका मॉरली हो गया एंड देन टाइम भी देखा जाए तो मेरा इतना मैं क्यों इतना टाइम दे पा रही हूँ बिकॉज फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं बाकी चीजों में
1: चीजों को वो मैनेज
0: वो मैनेज कर दे रहे सो दैट मैं उधर पहुंच पाऊँ एंड देन टाइम उतना टाइम दे पाऊँ तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट एक रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट रिगार्डलेस आप अगर आपका पैशन है एंड देन इफ यूर आपको उस तरफ काम करने का एफर्ट देने का अगर आपको आप कर सक रहे हैं तो आप आगे जा सकते हैं। इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स ऑल अबाउट आइडिया देन आपका कंसिस्टेंसी है देन आपका एफर्ट्स बहुत मैटर करता है ये सब चीजें।
1: आजकल तो वैसे भी कुछ महिला या पुरुष ऐसे कुछ तो धीरे धीरे ये गैप भी कम होते जा रहा है
0: कम हो रहा है बट इट हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है
1: अच्छी बात है। तो अगर वैसे अभी हमारे समय होने को है तो जाने से पहले जो जितने ओवे नियम्स का जो जैसे हमने पहले भी बोला कि ओवे नियम्स का 3 आउटलेट्स है हम जानते हैं नाहरलगन में है ईटानगर फिर भी लोकेशन आप हमारे श्रोताओं को बता दे जो अपने जो आपके स्टोर में जाके जो कैफे में जाके लेना चाहे तो।
0: ओके हमारा पहला स्टोर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 पॉइंट में है KFC के सामने।
1: अच्छा
0: एक वो है देन हमने गंगा में स्टार्ट किया है जो कि आकाशदीप का ओपोजिट में है एंड देन उसके बाद अभी दिस ईयर तो हमने एक नाहरलगन पे स्टार्ट किया है ई सेक्टर नाहरलगन
1: ई सेक्टर जी और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते
0: ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट बीच में हम कर रहे थे थ्रू हंगरी जी बट अभी कुछ समय के लिए हमने बंद किया है क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट में जैसे कि 3 स्टोर है तो अभी उससे कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ रहा था तो हमने अभी के लिए थोड़ा सा बंद किया है बट देन आप क्यू टेलर्स वगैरह के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं
1: जो
0: पिकअप डिलीवरी कर देते हैं एंड सेल्फ पिकअप तो है ही।
1: ठीक है तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता लोकेशन सुन लिए होंगे तो जो ओवे नियम्स विजिट करना चाहते हैं वो जरूर जाए और चक्के देखे तो जैसे मैंने पहले बोला कि इतने कम समय में इतने 3 आउटलेट्स वो भी कोविड टाइम को स्किप अगर हम करें तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा इसलिए अपने श्रोताओं को भी मैं जरूर यही बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर टेस्ट करके देखें। तो अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी जो खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उन लोगों को?
0: मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है क्योंकि बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए लेकिन यहाँ पे अरुणाचल में मैंने क्या देखा है एक ऐसा होता है कि कोई बेकिंग कर रहा है तो सब लग जाते हैं बेकिंग करने।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: कोई मैक्रम का काम कर रहा है तो सब वही लग जाते करने। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें करने को एंड

0: देन अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा आजकल नेट नेट सबके पास रहता है, थोड़ा सर्च करें बहुत सारी चीजें करने के लिए. जैसे कि अभी एक मैक्रम वर्क भी काफी चल रहा
1: हाँ
0: है एंड देन बहुत सारी महिलाएं उसमें काम करें, वो एक हो गया. बहुत सारी चीजें है करने के लिए, तो अगर आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च अपना करें, अपना इंटरेस्ट, वो सबसे
1: हाँ
0: इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फूड बिजनेस में हैं बट आपको खाने का कोई शौक नहीं है, तो
1: हाँ
0: आपको पता नहीं रहेगा कि क्या गलत जा रहा है क्या
1: हाँ
0: सही जा रहा है. तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है.
1: बनाने
0: तो
1: के साथ साथ खाने का भी
0: हाँ,
1: इंटरेस्ट होना
0: तो
1: पड़ेगा।
0: आपको वो टेस्ट का पता होना पड़ेगा.
1: हाँ
0: जैसे कि आप अगर मैक्रम का कर रहे हो तो आपको वो दिखना कैसा चाहिए, कैसे मतलब अपील करे कस्टमर्स को, वो सब चीजें देखना जरूरी होता है. तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. तो क्या होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बट लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिजनेस अभी चल रहा है या बूम कर रहा है, तो आप कूद जाते हो उसमें, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. आपको देखना है कि आपका पैशन है कि नहीं, आप उस हिसाब का काम कर पाओगे कि नहीं, वो एक देखना जरूरी है. तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको कई बार लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि धीरे धीरे, क्योंकि आप ऑब्वियसली 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज, आपका एक करियर पाथ है ये, तो बहुत साल सालों सालों तक करना पड़ेगा. तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दोगे उसमें, तो दैट्स वेयर फेलियर होता है मेरे हिसाब से.
1: इंटरेस्ट होना
0: जी,
1: पड़ेगा।
0: इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा आपका एंड मेहनत करने के लिए रेडी रहना
1: वही, बिना मेहनत का तो
0: है.
1: कुछ हो नहीं
0: जी
1: सकता ना। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो जो आपकी बातें हैं उनसे भी उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और अपने श्रोताओं को मैं तो फिर से बताऊंगी कि तुम्हीं रिबा जो है कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे ही अपना पैशन फॉलो करके आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल बैकर बन गए हैं। तो आप भी उनसे प्रेरित होइए और अपना कुछ नया करने की कोशिश
0: जी
1: कीजिए।
0: जी
1: जैसे इन्होंने बताया कि एक करते हैं तो सब लोग कूद जाते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो आपको और मतलब दुगनी मेहनत करनी होती
0: जी
1: है उसमें। और कुछ जब नया करता है तब ज्यादा लोग भी नई चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और आप अगर मैदान में अकेला है तो बाकी ऑप्शन भी लोगों के लिए
0: जी
1: नहीं रहते। तो कुछ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए। तो इसी के साथ हम तुमी रिबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमारे जो महिला मित्र है खास करके उनको अपनी जर्नी के जर्नी शेयर किया और जो भी आइडियाज है वो शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए.
1: तो श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: दोस्तों, आप सब सुन रहे थे वुमन एंड फैमिली प्रोग्राम मेरी बात एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे, जी हाँ, हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell, and the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। और वो कहते हैं ना कि गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। तो चलिए आज हम रास्तों को रुकने नहीं देते हैं, दौड़ा देते हैं रास्तों को भी प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का जो ये सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सब सुन सकेंगे अपना गीत कार्यक्रम, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: नई उम्मीद, नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सोकेप क्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमके नरालिन की आवाज में।

श्रोता कापांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज़। नमस्कार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपना गीत कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। रात्रि के 8:30 बस होने को है और अब आप आनंद उठा पाएंगे पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम यानी कि वेस्टर्न मेलोडीज के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Hello everyone, this is Kamsan, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Today's session explores a more delicate side of emotion. It's about love, loss and longing. These are the songs that speaks of relationship in all their complexity. It's about moments of joy, separation, reflection and healing. So let's start today's session with a song that feels warm and grounded. It speaks of closeness and affection in a small, in a simple, heartfelt way. Here's Your Man by Josh Turner. Please enjoy.

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज प्रोग्राम। आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ। ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है
1: और अभी टाइम चाहिए आपको।
0: इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भरा
1: 15 मिनट का मतलब क्या
0: न जाए और जलमग्न सड़कों ना।
1: अभी तुम कहाँ जा रहा है? अभी कहीं खाना खाने जा रहा है?
0: प्रयास ना करें।
1: नहीं, कितना? 9:15
0: और बहाव अपेक्षा से 9:15 सकता है। भारी वर्षा, आंधी, तूफान, तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो
1: हम वेट कर रहे हैं,
0: अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखे। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखे ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरिया जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
2: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest to ensure that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue.
1: भूले बिसरे गीत सदाबहार नगमों का कारवां.
0: He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
2: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprise Secretary Rubio of
3: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में. भले ही ये भूले बिसरे गीत क्यों ना हो लेकिन रहते हैं हमारे होठों पर सदा. जी हाँ, मुस्कान बनकर हमारे होठों को बिल्कुल ऐसे रंग दे देते हैं जैसे कि सुकून का एक मुस्कान इनको सुनने के बाद आ जाता है हमारे दिल में और कानों को भी सुकून देते हैं. भले ही ये भूले बिसरे क्यों ना हो गीत लेकिन सदाबहार है दोस्तों. और आपके लिए आज मैं चुनिंदा गीतों को लेकर हाजिर हुई हूं. वो कहते हैं ना कि तड़प है वो मेरे इस धड़कन का मगर अफसोस उसे क्या खबर मेरे इस तड़पन का. अक्सर दिल के आईने में देखा करते हैं उनकी तस्वीर को मगर उन्हें क्या खबर मेरे दर्पण का. हमने तो सांसों की पंखुड़ियां डाल दी थी उनके कदमों में मगर अफसोस उस संदील को क्या खबर मेरे अर्पण का. तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं. उम्मीद करती हूं कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है.
4: सारेगामा कारवां.

दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे हैं आप सबकी बहुत ही चहेता प्रोग्राम यानी कि भूले बिसरे गीतों के साथ, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है दोस्तों FM बैंड के 103.1 MHz पर से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अपना अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक ले ले

0: देखते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है कि कब आपने किसी को पहली बार देखा था? उस पल का जादू, वो एहसास जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो आपके लिए। क्या आपको याद है कि कब आपकी नजर भी किसी से टकराई थी? जी हाँ, वो पहली नजर प्यार की, भावनाओं की। जब पहली बार किसी से नजर मिलती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चलिए एक और बहुत ही प्यार भरा, नजरे भरा वाला गीत, यानी कि आंखों में प्यार लेकर आप सभी के लिए आ रहा है ये गीत आप सभी के लिए। और एक बात तो सच्ची किसी ने कहा है कि आंखों के रास्ते ही तो दिल पे उतरते हैं लोग, है ना। चलिए आप सभी को मैं ये गीत डेडिकेट कर देती हूँ, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, फिल्म कारवा के इस बेहद रोमांटिक गीत के साथ ही हमारे आज के भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम को एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दोस्तों सेहतमंद रहे। और एक खास बात कि इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कह देते हैं। जैसे कि पतंग कभी भी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है, लोग कहते हैं पतंग कट गई। यही शब्द आप अपने जिंदगी में शब्दों को उतार लीजिएगा और साथ ही हम चलते चलते यही कहेंगे कि अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में आप सभी के साथ मौजूद थे संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता टीम टीम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं थी यानी कि आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा। आप सभी की एक बार फिर से शुभकामनाएं तथा आपके मंगलमय कामना करते हुए हम अपनी इस सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। और साथ ही ये भी बता देते हैं कि आगे के कार्यक्रमों के लिए आप एफएम गोल्ड चैनल पर बने रहे। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: सेक्रेटरी एंड आई, देयरफॉर
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है।

0: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा पार्टी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्यों के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सिप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण लू का प्रकोप जारी है और आज दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में आज अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आयानगर और रिज आज सबसे गर्म स्थान रहे, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड पर 43.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि पालम और सफदरजंग में 43.7 और 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजोदबेक खालियम्बोएव को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is

0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा है कि श्री डोभाल और रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
3: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए और 2 लापता हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार अधिकतर कामगार जहरीले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित हुए हैं। गैस विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने शांगशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन में कीव पर रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ड्रोन और मिसाइलों के एक बड़े हमले के दौरान अपने शक्तिशाली हाइपरसोनिक ओरिजनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 4 साल से जारी